0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: कार्यक्रम आपण मन सुनछंती आकाशवाणी कटक केन्द्रो। आसंतु सुनिबा ओडिया एल्बम रो केतोटि गीत। प्रथम गीतर कंठशिल्पी निवेदिता।

0: ପିନ୍ବର୍ଡ଼ କହିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟର ଅଧିକାରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାରେ ନୁହେଁ, ନିଜର ଅଧିକାରକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାରେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାଧୀନତା ନିହିତ ଅଛି। ଆକାଶବାଣୀ କଟକ ସମୟ ସକାଳ 6:00 ବାଜିବାକୁ ଯାଉଛି। ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत तेजी से विकसित हो रही भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय शक्ति है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में एक निजी मीडिया हाउस द्वारा आयोजित सम्मेलन में कहा कि पिछले दशक में भारत की उपलब्धियां

0: राष्ट्र प्रथम की भावना से निर्देशित रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में लिए गए निर्णय और कार्रवाई सदियों तक देश के भविष्य की आधारशिला रहेंगी।
1: भारत जो कर रहा है वो आने वाले 1000 वर्ष का फ्यूचर लिखने वाला है और यही दुनिया के लिए सबसे बड़ी भारत की गारंटी है। भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है।
0: प्रधानमंत्री ने G7 शिखर सम्मेलन में अपनी हाल की भागीदारी का उल्लेख करते हुए कहा कि विश्व नेताओं ने राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत के प्रति भारत की अटल प्रतिबद्धता को समझा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की चेतना में सदियों से सहेजी गई स्मृतियां जीवंत हैं। वर्तमान में उठाए गए कदम अगले 1000 वर्षों के लिए भविष्य को आकार देंगे। सरकार के 12 वर्ष के सेवा कार्यों का स्मरण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब देश के लगभग 45,000 गांवों तक मोबाइल कनेक्टिविटी पहुंच चुकी है। श्री मोदी ने कहा कि आज कुछ लोग संविधान की बात उठाते हैं, लेकिन जब वे सत्ता में थे तो नक्सलग्रस्त क्षेत्रों में संविधान का नाम लेने पर ही गोली तक मार दी जाती थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान और मेक इन इंडिया जैसी पहल इस कारण सफल हो सकी है क्योंकि देश के लोगों ने राष्ट्र को सर्वोपरि रखा और देश के प्रति कर्तव्य निभाए। आर्थिक सुधारों से मध्यम वर्ग को मिल रहे लाभों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कर राहत उपायों से परिवारों की कर मुक्त आय बढ़ी है। भारत और मोरक्को के बीच आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह की दूसरी बैठक कल नई दिल्ली में हुई। बैठक की सह अध्यक्षता विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव डॉ बिनोद बाहड़े और मोरक्को के राष्ट्रीय न्यायिक पुलिस ब्रिगेड के प्रमुख हिशाम बाली ने की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने सूचना साझा करने, क्षमता निर्माण और बेहतर कार्य प्रणालियों के आदान प्रदान के माध्यम से आतंकवाद के खिलाफ द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नैफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। उम्मीद है कि ये पोर्टल नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने और किसानों, सदस्य संस्थानों और हितधारकों के हित में बेहतर डिजिटल मंच प्रदान करेगा। लखनऊ आग हादसे में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थी मारे गए और 9 घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज के लिए संभावित हाजियों के आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने हज नीति 2027 जारी करते हुए कहा कि आवेदन हज कमेटी ऑफ इंडिया के पोर्टल और हज सुविधा ऐप के जरिए ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं, जिससे ये प्रक्रिया ज्यादा आसान और सुलभ हो जाएगी। फीफा विश्व कप में इस समय अमेरिका के फिलाडेल्फिया में ग्रुप 1 के मुकाबले में फ्रांस और इराक के बीच मैच चल रहा है। इससे पहले ग्रुप जे के मैच में अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराया। दोनों गोल अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने किए। इसके साथ ही मेसी ने 18 गोल के साथ जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोज का 16 गोल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। FIH प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी कटक आरंभ करुछु भक्ति गीतर कार्यक्रम वंदना। आज वंदनार प्रथम भक्ति गीत गाई भिकारी चरण बल शिल्पी कंठरे राधामोहन पंडा रचना। करुणा सागर हे एति करुणा कर तुमरी करुणा तुमरी आलोकी पापनाश हे मोर।

0: देखी करुणा कर।
1: बंधु आउ मते बाधा थियो नाही, आगरे आलोक पथ से पथे मु जीवी थाई। कृष्ण वल्लभ रथ रचना गाई सुमती देवी।

0: ଏଥିର ଅନ୍ୟ ଏକ ସୂଚନା, ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ସାମୟିକ ସମ୍ବାଦଦାତା ଆବେଦନ ନିମନ୍ତେ ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ। ଆକାଶବାଣୀ କଟକ ସମ୍ବାଦ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁଗୁଳ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଜଗତସିଂହପୁର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିରେ ସାମୟିକ ସମ୍ବାଦଦାତା ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଦରଖାସ୍ତ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଉଛି। ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ 7/7/2026। ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ବୟସ 24 ବର୍ଷରୁ 50 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ପାଇଁ www.newsonair.gov.in ଅଣ୍ଡର ଭ୍ୟାକେନ୍ସିଜ୍ ସେକ୍ସନ୍ ଦେଖିବାକୁ ଅନୁରୋଧ।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आपके परिवार में अनेक प्रकार के वस्त्र होंगे, अनेक प्रकार के फैब्रिक्स होंगे, अनेक कंपनियों के प्रोडक्ट होंगे, क्या उसमें एक खादी का नहीं हो सकता क्या? मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि कम से कम एक चीज, भले हैंडकरचीफ हो, भले घर में नहाने का तौलिया हो, भले हो सकता है बेडशीट हो, तकिए का कवर हो, पर्दा हो, कुछ तो भी हो। अगर परिवार में हर प्रकार के फैब्रिक का शौक है, हर प्रकार के कपड़ों का शौक है, तो एक ये भी तो होना चाहिए। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप खादी का वस्त्र खरीदते हैं तो एक गरीब के घर में दिवाली का दिया जलता है।

0: ଆକାଶବାଣୀ କଟକ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक बल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ अग्निकांड में चार अधिकारियों को निलंबित किया, चार और आरोपी गिरफ्तार। उर्वरक ले जा रहे चार जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य पार करने के बाद भारतीय बंदरगाहों की ओर बढ़े। कतर ने रास लाफान एलएनजी विस्फोट में 12 भारतीय नागरिकों की मौत की पुष्टि की। और कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे यूएस ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक रहा है। नई दिल्ली में कल निजी मीडिया हाउस के सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्वसनीयता, स्थिरता और वैश्विक हित के लिए प्रतिबद्धता पिछले दशक में भारत की उपलब्धियों के मूल में रही है। G7 शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि विश्व नेताओं ने राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता देने की भारत की अटल प्रतिबद्धता

0: को साझा किया है। सरकार के 12 वर्ष के कार्यों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, खादी और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की पहल राष्ट्र निर्माण के लिए नागरिकों की प्रतिबद्धता में सफल हुई है।
1: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी से उभरे हैं। श्री मोदी ने सस्ते आवास, कर सुधार, स्वास्थ्य देखभाल योजना और बेहतर शहरी बुनियादी ढांचे का उल्लेख किया। देश की मजबूत अवसंरचना पर बल देते हुए श्री मोदी ने कहा कि वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत रेलगाड़ियां विस्तारित राजमार्ग और हवाई अड्डों से संपर्क व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है।
1: 2014 में करीब 28 लाख लोग हर रोज मेट्रो से सफर करते थे, आज करीब 1,28,00,000 लोग हर रोज मेट्रो से सफर कर रहे हैं। अब वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत जैसी अच्छी सड़कों, अच्छे हाईवे से समय तो बच ही रहा है, गाड़ियों की मेंटेनेंस पर होने वाला खर्चा भी कम हुआ है। बीते वर्षों में एयरपोर्ट की संख्या डबल हुई है, इससे कई छोटे छोटे शहरों में भी मिडिल क्लास को हवाई यात्रा की सुविधा पहली बार मिली है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में अभूतपूर्व अवसर सृजित हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 140 करोड़ भारतवासियों के सामूहिक प्रयासों से विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।
1: भारत आज रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार हो चुका है, ये गति आगे और तेज होगी कि हमारा सपना जितना बड़ा है हमारे प्रयास भी उतने ही विराट होंगे और 140 करोड़ देशवासियों का यही साझा प्रयास विकसित भारत बनाकर रहेगा।
0: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में कल ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में चीन की विदेश मंत्री वांग यी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। बैठक में दोनों देशों के संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में हुई प्रगति सहित आपसी सहयोग के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री डोभाल ने कहा कि भारत और चीन के बीच स्थिर, भरोसेमंद और सकारात्मक संबंध दोनों देशों के बीच विश्वास और बेहतर समझ को मजबूत करने में सहायता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की तथा सकारात्मक संबंधों की दिशा में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि आज 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 अलंकरण दिए जाएंगे।
2: इस वर्ष केंद्र सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 सम्मान मरणोपरांत प्रदान किए जाएंगे। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। आज राष्ट्रपति 65 विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करेंगी। इनमें टेनिस के दिग्गज विजय अमृतराज, अभिनेता ममूती, गायिका अलका याग्निक और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा जैसी प्रमुख हस्तियां शामिल हैं। वर्ष 1954 में स्थापित किए गए यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। पद्म पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान, लोक प्रशासन तथा व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए प्रदान किए जाते हैं। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: हमारी विशेष श्रृंखला पीपुल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में पद्म पुरस्कार पाने वाले सम्मानित व्यक्तियों के जीवन, उनके कार्यों और समाज में उनके योगदान की जानकारी दी जा रही है।
3: मैदाब का काम सीखा, अंगूरी का काम सीखा है, मोटी चिकन मामूली का काम, तो इसमें सबसे बारीक काम एक मरूड़ी का ही होता है, तो मरूड़ी का काम जो है लगातार नहीं किया जाता है, ये बहुत ही फाइन वर्क होता है।
4: जब हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी का यूथ और माइनॉरिटी कम्युनिटी का यूथ वो एक दूसरे को समझने की कोशिश करे, वो ये जाने कि कश्मीर का जो एक नॉर्मल सी के लिए

0: वही गुलदस्ता जो कश्मीर जिसमें हमारे गांधी जी को किरण नजर आई थी या भारत का ताज के रूप में ये जो था उसी गुलदस्ते को फिर से उजागर करने के उसको बनाने के लिए हमने प्रयास करा।
1: ये विशेष कार्यक्रम आज सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल 100.1 पर प्रसारित किया जाएगा। श्रोता इन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR के आधिकारिक YouTube चैनल पर भी सुन सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। लखनऊ अग्निकांड में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को भी निलंबित कर दिया गया है। अलीगंज पुलिस ने BNS और उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत 6 नामजद आरोपियों और अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ FIR दर्ज की है। राज्य सरकार ने आग की घटना की उच्च स्तरीय जाँच के आदेश दे दिए हैं। घटना की जाँच के लिए एक विशेष जाँच दल SIT का गठन किया गया है, जिसके सदस्य 7 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। SIT में अतिरिक्त मुख्य सचिव धर्मार्थ कार्य, पर्यटन और संस्कृति अमृत अभिजात और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक लखनऊ जोन प्रवीण कुमार शामिल हैं। कल दोपहर लगी भीषण आग में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें ज्यादातर 16 से 25 साल की उम्र के छात्र थे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। इससे नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुगम बनाने और किसानों तथा कृषि संस्थाओं के हित में नेफेड की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा। सहकारिता मंत्रालय ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान श्री अमित शाह कई महत्वपूर्ण डिजिटल और किसान केंद्रित पहल का भी शुभारंभ करेंगे। यूरिया, डाई अमोनिया फॉस्फेट और सल्फर लेकर आ रहे 4 भारतीय मालवाहक जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य सफलतापूर्वक पार कर चुके हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अनुसार ये जहाज अब देश के विभिन्न बंदरगाहों की ओर बढ़ रहे हैं। इनमें आंध्र प्रदेश के कृष्णापट्टनम और काकीनाडा बंदरगाह, ओडिशा का पारादीप बंदरगाह और गुजरात का मुंद्रा बंदरगाह शामिल हैं। दोहा स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि कतर के अधिकारियों ने रास लाफान क्षेत्र में रविवार रात हुई दुर्घटना में 12 भारतीय नागरिकों की मौत की पुष्टि की है। दूतावास ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। घटना में घायल सभी लोगों को उचित चिकित्सा उपचार मिल रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारतीय नागरिकों सहित अन्य लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। डॉ जयशंकर ने कहा कि दोहा स्थित भारतीय दूतावास कतर के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और भारतीय नागरिकों के परिवारों की सहायता कर रहा है। कतर की सबसे बड़ी गैस रिफाइनरी में हुए विस्फोट में 13 लोग मारे गए और 66 अन्य घायल हो गए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए परामर्श जारी किया है। यह यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक आयोजित की जाएगी। कश्मीर से जम्मू जाने वाले वाहनों को सवेरे 11:30 से पहले नवयुग सुरंग पार करने की अनुमति नहीं होगी। वहीं जम्मू से कश्मीर जाने वाले वाहनों को प्रतिदिन दोपहर 3 बजे के बाद सुरंग में प्रवेश नहीं मिलेगा। परामर्श में घाटी के कई महत्वपूर्ण स्थानों के लिए समय सीमा भी तय की गई है। और अब खेल समाचारों के साथ हैं आनंद पाठक।
3: कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे अमरीकी ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में बेल्जियम के जूलियन कैरागी से खेलेंगे। किदाम्बी श्रीकांत अपने पहले दौर के मुकाबले में चीनी ताइपे के लियाओ झुओ फू का सामना करेंगे। वहीं महिला सिंगल्स में भारत की 7 खिलाड़ी मुख्य ड्रॉ में शामिल हैं। 17 वर्षीय तन्वी शर्मा जर्मनी की यवोन ली के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेंगी। महिला डबल्स में ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद पहले दौर में स्पेन की पाउला लोपेज और लूसिया रोड्रिगेज का सामना करेंगी। वहीं हॉकी में FIH प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष टीम का सामना पाकिस्तान से होना है। उधर फीफा विश्व कप में फ्रांस ने इराक को 3-0 से हरा दिया है। वहीं न्यूयॉर्क में नॉर्वे ने सेनेगल को 3-2 से हराया। इस बीच आज सवेरे 8:30 से जॉर्डन और अल्जीरिया के बीच मैच खेला जाएगा। इससे पहले अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराया। दोनों गोल अर्जेंटीना के कप्तान लियोनल मेसी ने किए। साथ ही मेसी 18 गोल के साथ जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोज का

0: 16 गोल का रिकॉर्ड तोड़कर विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं।
1: मौसम विभाग ने अगले दो दिन तक असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्र और सिक्किम में बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, अरुणाचल प्रदेश, तटवर्ती कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, गोवा, ओडिशा, तेलंगाना, केरल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी ऐसी ही स्थिति रहेगी। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बृहस्पतिवार तक तेज हवाएं चलने और गरज के साथ वर्षा का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे newsonair मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
2: धन्यवाद मुकेश। अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, अमेरिका ईरान के बीच बात बनी, 60 दिन में

0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
1: धन्यवाद मुकेश। अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, अमेरिका ईरान के बीच बात बनी, 60 दिन में होगा अंतिम समझौता। ईरान के तेल से पाबंदी हटी, स्विट्जरलैंड के बुर्गेनस्टॉक रिसॉर्ट में घंटों चली वार्ता। बातचीत सकारात्मक और रचनात्मक माहौल में हुई, जेडी वेंस ने बैठक को ऐतिहासिक बताया। पंजाब केसरी ने तनाव के बीच उम्मीद शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, जेडी वेंस अमेरिका के भावी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हो सकते हैं, उन्हें डोनाल्ड ट्रंप का राजनीतिक उत्तराधिकारी माना जा रहा है। अगर शांति समझौता विफल रहता है तो ट्रंप इसका पूरा दोष वेंस पर डाल देंगे। ये शांति समझौता वेंस के राजनीतिक करियर के लिए दोधारी तलवार बन चुका है। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने इस्तीफे का ऐलान किया, बर्नहम ने पीएम पद की दावेदारी पेश की। स्टार्मर बीते 10 साल में ब्रिटेन के पीएम पद से इस्तीफा देने वाले 6वें व्यक्ति। जनसत्ता की सुर्खी है, लखनऊ के अलीगंज में इमारत में लगी आग, 12 बच्चों समेत 15 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री ने हालात का जायजा लिया, जांच के लिए एसआईटी गठित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए पीड़ितों की हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। दैनिक जागरण ने लापरवाही की आग शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, बहुत दिन नहीं हुए जब देश की राजधानी में अवैध होटल में आग से 20 से अधिक लोग मारे गए थे। माना यह गया था कि इस घटना से सीख ली गई होगी, लेकिन लखनऊ की आग से पता चलता है कि ऐसा नहीं किया गया।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक बल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ अधिग्रहण कांड में 4 अधिकारियों को निलंबित किया, 4 आरोपी गिरफ्तार। उर्वरक लेकर आ रहे 4 जहाज हुरमुज जलडमरू मध्य पार करने के बाद भारतीय बंदरगाहों की ओर बढ़े। और कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे यूएस ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Varma. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says principle of nation first has been driving force behind India's transformation into a fast-growing, credible and reliable global power. President Draupadi Murmu to confer Padma Awards during second round of civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan today. Uttar Pradesh government suspends 4 officials in connection with Lucknow fire incident. 4 accused arrested. 4 ships carrying fertilizers heading towards Indian ports after crossing Strait of Hormuz. Qatari authorities confirm death of 12 Indian nationals in Ras Laffan LNG explosion. And Lakshya Sen and Tanvi Sharma to lead India's challenge at US Open Super Badminton Tournament beginning today in California. Prime Minister Narendra Modi has said the principle of nation first has been the driving force behind India's transformation into a fast-growing, credible and reliable global power. Addressing a summit organized by a private media house in New Delhi, the Prime Minister said the country's achievements of the past decade were rooted in trust, stability and a commitment to the larger global good.
3: भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है, और भारत राइजिंग पावर के साथ साथ सुपर पावर तक ले गए। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि भारत रिलायबल पावर है। मैं भी 2-3 दिन पहले जी समिट से लौटा हूं और दुनिया का हर नेता, हर देश इस बात को भली भांति समझता है कि आज के भारत के लिए नेशन फर्स्ट ही सबसे बड़ा मंत्र है, सबसे बड़ा सिद्धांत है।
2: Referring to his recent participation in the G7 summit, Mr. Modi said, world leaders recognized India's unwavering commitment to putting national interests first, a philosophy that continues to shape the country's policies and development agenda. Highlighting the government's 12 years in office, the Prime Minister said, in it

बाघ को जन्म देने वाला बागबान, परिवार को जन्म देने वाला पिता, दोनों ही अपने खून पसीने से अपने पौधों को सींचते हैं, ना सिर्फ अपने पेड़ से, उसके साय से भी प्यार करते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद है एक रोज जब वो जिंदगी से थक जाएगा, यही साया उसके काम आएगा।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: काम सुधारे लोन दार काड़ा ताबी आपरे
2: अजणा ठारु दूरेइ रुहन्तु।
3: RBI कहे
2: सचेतन हुअन्तु, सतर्क रुहन्तु।
3: श्रोताबन्धु, कथा ए समाजर, कथा आम मनर से प्रवृत्तिर। भगवान मनुष्य गढ़ी ता मनरे भावना शक्ति देइछन्ती, चिंता करिबार शक्ति देइछन्ती, भल मंद बुझि विचारि काम करिबार गुण मध्य देइछन्ती। हेले हेले मनुष्य काहीँकि एमती हेउछि, कौन बा अभाव रहिछि ए समाजरे तार? घर भितरे अहंकार, स्वार्थपरता, तोर मोर पुणि मिथ्या आत्मबड़िमा मारि देउछि मानविकताको। जहार जालरे दंपति, जहार जालरे आम संपर्क, संपर्कर सीमा कर्तव्य पितामाता एठे सबु अवहेलित। बयस हात छाड़ी चली जाउथिया बळे मध्य बुझुनि मनुष्य वृद्ध पितामातांक से ज्ञान को, जहाँ से दिने स्वप्न देखिथिले आम पई राजु रास्तार फुटपाथ रे अबा वृद्धाश्रमर केउ एक

0: आखि खोलो बाळक, देख जहाँको तुमे भक्तिरे ध्यान करुछ से तुम सम्मुखरे स्वयं दण्डायमान।
1: के प्रभु शंकर मा पार्वती?
2: हाँ पुत्र, प्रभु कैलासपति तो डाक शुणी।
0: तो भक्तिरे मु संतोष लाभ करिछि बाळक, जहाँ तोर अभिलाष निर्विघ्नरे प्रकाश कर। किए तू, काहेकि मते ध्यान करुछु?
1: प्रभु चंद्रशेखर मा महिष मर्दिनी, मु नागराज बासुकी तनया नागबाळीर पुत्र नागार्जुन।
2: हो जेउ नागबाळी आम दुहिंकु आराधना करी तत्ते पुत्र रूपरे लाभ कला, तू तारी पुत्र ना? एहा भितरे तू एडुटिए होइगलुनी।
0: तोर पुणी दुख कोन वत्स, काहेकि मते ध्यान करुथिलु?
1: प्रभु नीलकंठ माताक ठारु सुणिली पिता मोर तृतीय पांडव अर्जुन तांकु विवाह करी अति अन्याय भावरे पितृगृहरे छाड़ी दे जायछंती। मते आसी 7 वर्ष हेलाणी, तथापि से मते दिने हेले संखळिबाकु आसिले नाही कि पछरले बे नाही। गुरुगृहरे पाठसाथी माने मते अणबाबू कहि विद्रूप कले, एभळी अपमान ठारु आउ अधिक अपमान कोन थाई पारे प्रभु?
0: अवश्य अवश्य, अर्जुन निश्चित भावरे तो प्रति अन्याय करिछि।
1: सेहि पई मु चाहे हस्तिनाकु जाई पितांकर अन्याय विरुद्धरे स्वर उत्तोलन करिवि।
2: निजर पुत्र बोली से जदि तते अस्वीकार करंती,
1: ताहले मु तांक सहित युद्धरे अवतीर्ण होई मोर प्रकृत परिचय प्रदान करि आसिबि। मा
0: ताहले तू कोन चाहु वत्स?
1: मते वर प्रदान करंतु प्रभु, मु युद्धरे अवतीर्ण होई महाधनुर्धारी वीर श्रेष्ठ अर्जुनंकु परास्त करिवि। अस्त्ररे कटिबि नाही, जळरे बुडिबि नाही, कि अग्निरे मध्य पोडी हेबि नाही। 7 सहस्र पांडव सेना ओ यादव सेना एकत्र होई मोर सम्मुखीन हेले मध्य मो निकटरु परास्त हेबि।
0: तथास्तु नागार्जुन, तथास्तु, मु वर प्रदान करुछि, पिता पुत्रर समर हेले तोर हेबो विजय आउ अर्जुनर हेबो पराजय। किंतु से समर एबे नुहे नागार्जुन, उपयुक्त समय आसिले तू निश्चित भावरे अर्जुन सहित युद्धरे अवतीर्ण हेबु, आउ किछि काल तते अपेक्षा करिबाकु पड़िबो।
1: मुते बे वर्तमान कोन करबि प्रभु?
2: मो गणेश कार्तिक परि तू मध्य आजिठारु मोर आउ गोटिए प्रिय पुत्र।
1: ताहले केउ कर्तव्य करी मु तुम सेवारे निजकु नियोजित करबि, ताहे अधम पुत्र प्रति आदेश कर। मा
2: बेस, आजिठारु तू हेबु हर उद्यानर रक्षक। से उद्यानरे मोर एक पालित गंडा विचरण करुची, देहरे तार मणिमुक्ता खचित मोहार्क पोषाक आउ गळारे तार सुवर्ण खागुड़ी शोभा पाउची। आजिठारु सेई हर उद्यान ओ गंडा तोर रक्षणाबेक्षण दायित्व रहिबे बसच।
1: धन्य हेली मा पार्वती, धन्य हेली प्रभु आशुतोष, तुमरे आदेश मोर शिरोधार्य।
0: ताहले आमो साथिरे चाल पुत्र, आमे तोते सेही उद्यान रे पहुंचाई दे कैलासकु यात्रा करिबु।
1: चालंतु प्रभु, चलो माँ।

0: ये देवर्षी नारद आसंतु आसंतु देवर्षी हठात ये असमय रे ये जमपुरी रे कहंतु देवर्षी आगमन रो कारण कौन
1: नारायण नारायण ना जंतुपति आंभ आगमन रो कोनसी उद्देश्य नाही तुम्भ आतिथ्य रे आंभे अत्यंत प्रीत किंतु
0: किंतु पुणी कौन देवर्षी
1: नारायण नारायण आसिला बेळु मु लक्ष्य करूची तुम मनरु सरस्ता जेपरि उभेई जाइछि विषन्न बदन सांगकु तुम्बे खूब विचलित थिला परि मने होउछो विधाता प्रदत्त एही गुरु दायित्व संभालिबारे तुम्बे कोनो संतुष्ट नुह
0: मु एथिरे संपूर्ण संतुष्ट देवर्षी
1: नारायण नारायण ताहेले को दुख लागि तुम्भ मनरे विषन्नता जंतुपति
0: से दुख मोर अवर्णनीय देवर्षी मात्र हिसाब फळरे मु एक सांघातिक महाव्याधि रे आक्रांत
1: सांघातिक महाव्याधि
0: हो देवर्षी माता छाया देवीक कोप जर्जरित अभिशाप फळरे मो बाम पाद गळित कुष्ठ रोग रे आक्रांत से व्याधि ग्रस्त पादरु अहरह छुटी चलिछि पूज रक्तर धार मोर सिंहासन पाद देश देई सिंहासन तले विभिन्न पवच्छ उपरे दण्डायमान पापी माने से पूज रक्त धारर संस्पर्शरे आसि प्रायश्चित करुचन्ति तांको जघन्य पापर एई देखन्तु देवर्षी मो सिंहासन तले तृतीय पवच्छ उपरे गोटे पादरे दण्डायमान से पापी तुकु चिन्हि पारुचन्ति तांकर पाप एते जघन्य जे ए पर्यंत तांकु बसिबा पाए मध्य अनुमति मिलि नाहि
1: से किए जंतुपति
0: से होचंते पांडव मानंकर पूजनीय पिता महाराजा पंडु ब्रह्महत्या दोष लागि से शास्ति भोग करुचंति
1: नारायण नारायण नारायण प्रभु श्रीकृष्णंकर प्राणठो बळि प्रिय पंच पांडवंक पितांकर आजि ए दुर्दशा कोन ये ब्रह्महत्यार कहानी जंतुपति
0: छुळंतु देवर्षी महाज्ञानी महापंडित अग्निकारु सिंहर स्वर्गवास हेबारु देवलोकरे देवता माने तांको आदर अभ्यर्थना कले नाही कि पाखरे मध्ये बसाई देले नाही देवता मानंकर अति सम्मानजनक सुधर्म सभारे मध्ये तांको बसिबा पई आसनटे मिलिला नाही
1: काहे कि एपरि घटिला कोन थिला ऋषिंकर अपराध
0: अपराध किछि नहे ऋषि थिले केवल आजन्म ब्रह्मचारी तांको जीवदशा रे से संसार करिनथिबारु देवलोक रे आदर और सम्मान पाई पारले नाही एपरि कि देवता माने तांको विद्रूप एवं परिहास करबा को मध्य पछाइले नाही
1: तापरे तापरे कोन हला धर्मराज
0: लज्जा और अपमान रे जर्जरित हई ऋषि अग्निका कोप मूर्ति धारण करी मृत्यु को प्रत्यावर्तन कले निज को निज धिक्कार करी मृत्युर एक अरण्य रे भ्रम भ्रम तांकर संसारी हबा को इच्छा प्रबल ही उठिला कामनारे उन्माद ही से मुहूर्त रे निजर अवस्थिति पाप पुण्य अन्याय अन्याय को झोलांजलि देई निकट रे घास चलुथबा एक मुर्गुणी सहित बलात्कार करी श्रृंगार रस रे लिप्त हेले ऋषिंकर ही पशु प्रवृत्ति को सह्य करि न पारी मुर्गुणीटी चित्कार करी त्राहि त्राहि डाक छाड़िला दुर्योग को ठीक सेतिकी बळे अरण्यर अपर पार्श्वरे महाराजा पंडु मुर्गया को आसी शिकार खोजुथिले मुरगोली रो शब्द सुनी राजा तत्क्षणत शिकार उद्देश्य रे निजर शब्द भेदी सर प्रयोग करंते चक्षुर पलक मात्र के ऋषि अग्निका ओ मुरगोली प्राण त्याग कले ब्राह्मण को हत्या करिथिबारु ब्रह्म हत्या दोष रे दोषी हे महाराजा पंडु तांको मृत्यु परे एपरि भाव रे जमदंड भोग करचंदि देवर्षी
1: नारायण नारायण नारायण यहा मध्यरे पांडव माने एते बड़ विराट राजसीय यज्ञ करितिले सुद्धा तांको पिता पंडु तथापि ब्रह्महत्या पापरु मुक्त होई पारले नै
0: ना देवर्षी ना पांडव मानंकर सेपरि महान धर्म कार्य महाराज पंडु को शाप मुक्त करि पारि नै
1: ताहेले ताहेले एथि पई किछि कोनो उपाय नै जंतुपति
0: अछि उपाय अछि देवर्षी
1: कोन कोन से उपाय

0: मो पाखकु आस
1: स्वामी
0: नाक पाली
2: वा वा वा चमत्कार चमत्कार ये दृश्य अति चमत्कार शिव शिवा हरि अर्जुनंकर महामिलन परी अर्जुनंकर पत्नी आउ पुत्र सहित ये मिलन अपूर्व अपूर्व नारायण नारायण नारायण
3: जय सृष्टिकर्ता ब्रह्मांकर
1: जय कैलासपति देवदेव महादेवंकर
3: जय जय देवकी नंदन प्रभु श्री कृष्णंकर।

0: ଶୁଣିଲି ନାଟକ ମହାମିଳନ। ବିଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ରରେ ଥିଲେ ଅର୍ଜୁନ, ନାରାୟଣ ମହାନ୍ତି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ଶତପଥୀ, ଶିବ ଚକ୍ରଧର ଦାସ, ବାସୁକୀ କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ର ଶତପଥୀ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଦୀପେନ ଘୋଷ, ନାରଦ ମାଧବାନନ୍ଦ କର, ଯମ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ତ୍ରିପାଠୀ, ବ୍ରହ୍ମା ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତ, ନାଗାର୍ଜୁନ ସୋନାଲି ଦେ, ପାର୍ବତୀ କଳ୍ପନା କୁମାରୀ ଦାସ ଏବଂ ନାଗବାଳୀ ପ୍ଲାବିନୀ ପାଢ଼ୀ। ରଚନା ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ମୁଣିଆ, ପ୍ରଯୋଜନା ଭଗବାନ ମହାନ୍ତି, ସହଯୋଗିତା ନାରାୟଣ ମହାନ୍ତି। ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ପ୍ରଚାରିତ ହେଉଛି 308.6 ମିଟର ତଥା 972 କିଲୋହର୍ଜ ଯୋଗେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଡିଟିଏଚ୍ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅନ୍ ଏୟାର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି।
1: ମନ୍ କି ବାତ୍ ହେ ଜନ ଜନ କି ସଭି କି କୁଛ ଅପନି ସି, ସଂଘର୍ଷୋଁ କେ କୁଛ କିସ୍ସେ, କାହାନୀ କୁଛ ସଫଲତାଓଁ କି, ଅନକହି ବିରାସତ କି, ଉମ୍ମୀଦେଁ ନୟେ ଭାରତ କି। ମହିନେ କେ ଆଖରି ରବିବାର କା ରହତା ହେ ଇନ୍ତଜାର, ମଲୟାଚଲ କେ ଆଚଲ ସେ ବିନ୍ଧ୍ୟାଚଲ କେ ଆଙ୍ଗନ ତକ, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର କେ ଘାଟ ସେ ହିମାଳୟ କେ ବିସ୍ତାର ତକ ହୋତୀ ହେ ମନ କି ବାତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେ ସାଥ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
0: सुनंदे को सूचना, आकाशवाणी कटक संवाद विभाग पक्षरु अनुगुल, बालेश्वर, ଜଗତସିଂହପୁର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଚୁକ୍ତି ଭିତ୍ତିରେ ସାମୟିକ ସମ୍ଭାଦଦାତା ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଦରଖାସ୍ତ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଉଛି। ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ 7/7/2026। ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ବୟସ 24 ବର୍ଷରୁ 50 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ପାଇଁ www.newsonair.gov.in/vacancies ସେକ୍ସନ୍ ଦେଖିବାକୁ ଅନୁରୋଧ।

0: अजना लिंक क्लिक करंतु नै साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 मने रखंतु एसबीआई सचेतन रहंतु सुरक्षित रहंतु
1: प्रजन करे छु केतोटी आधुनिक गीत प्रथमी शिल्पी रीता पटनायक शिल्पी कंठरी प्रफुल्ल कुमार त्रिपाठी रचना

0: ଶୁଣୁଥିଲେ ଓଡ଼ିଶୀ କୀର୍ତ୍ତନ, ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ ଅର୍ଜୁନ ମୁଦୁଲି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଥୀମାନେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
0: प्रचार करुछु मंजुल मध्यान, जेउंथिरे आपण माने शुणि परिबे आम ଶ୍ରୋତାମାନେ ଏସ୍ଏମ୍ଏସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିବା ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ କଥାଚିତ୍ରର ଗୀତ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ଏସ୍ଏମ୍ଏସ୍ କାହାର ଆସିଛି। ଇଏ ହେଲେ ଆମ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ ବାମଦେବ ପୃଷ୍ଟି ବଳରାମ ସାହୁ ଦକ୍ଷିଣକୂଳ ଯାଜପୁରରୁ। ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ କଥାଚିତ୍ର ସତୀ ଅନୁସୂୟାର ଗୀତଟିଏ, ଯାହାକୁ ଗାଇଛନ୍ତି ପାଣି ଜୟରାମ ଏବଂ ସାଥୀ।

0: এসএমএস অনেক গুড়িয়ে, কিন্তু সময় সীমিত। তবে যদি আপনার অনুরোধর গীত আজ বাজিপারি না, তবে পরবর্তী কার্যক্রমে আমি নিশ্চয় এখন সামিল করবু। এইটি শেষ করুছ আজর মঞ্জুল মধ্যাহ্ন আকাশবাণী কটক। সময় দিন গোটে বাজুক যাচ্ছি, প্রথমে হিন্দি এবং পরে পরে ইংরেজি সংবাদ রিলে করুছ আকাশবাণী দিল্লি।
1: নমস্কার, আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মে কনকলতা। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ निफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि निफेड किसानों की सेवा कर रहा है।
2: नाफेड ने एक प्रकार से नेफिक्स डॉट इन, दृष्टि, ईआरपी और नाफेड कल्याण, ये चार पहलों की शुरुआत। तो वो क्रांतिकारी इसलिए कि नाफेड जो 2014 में बंद होने की कगार पर आ गया था, आज नाफेड ये सारी पहल कर 500 करोड़ के मुनाफे के साथ, 30,000 करोड़ के टर्नओवर के साथ देश के 74,00,000 किसानों की सेवा कर रहा है।
1: इस पोर्टल की शुरुआत नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण कदम है। इससे नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुगम बनाने और किसानों तथा कृषि संस्थाओं के हित में नेफेड की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजित डोभाल ने आज सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में श्री डोभाल ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि गैर पारंपरिक खतरे अब राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल गए हैं।
3: We need to be cognizant of the new security threats and challenges.
4: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे। पद्म पुरस्कार विजेताओं पर आकाशवाणी अपने विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। इस श्रृंखला के माध्यम से श्रोताओं को पद्म पुरस्कार विजेताओं के जीवन और उनके योगदान की जानकारी मिल रही है। ये कार्यक्रम एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रसारित होगा। इन्हें न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में अलनीनो के मौसम पर पड़ने वाले प्रभाव और कृषि पर इसके असर की समीक्षा के लिए एक बैठक की। बैठक में कई राज्यों के कृषि मंत्रियों, सचिवों, जिला कलेक्टरों और अधिकारियों ने भाग लिया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री चौहान ने कहा कि अलनीनो की संभावित स्थितियों को देखते हुए सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने और कृषि तथा खेती पर पड़ने वाले किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। अयोध्या में राम मंदिर में प्राप्त दान के गबन के आरोपों की जांच कर रहे विशेष जांच दल एसआईटी ने उत्तर प्रदेश सरकार को अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सौंप दी है। यह रिपोर्ट लखनऊ संभागीय आयुक्त विजय विश्वास पंत ने अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद को सौंपी। अधिकारियों ने बताया कि जांच अभी जारी है। अयोध्या राम मंदिर में प्राप्त दान के दुरुपयोग के आरोपों के सामने आने के बाद मंदिर ट्रस्ट के अनुरोध पर उत्तर प्रदेश सरकार ने इस महीने की 13 तारीख को एसआईटी का गठन किया था। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर और मदुरई में 18 परिसरों में तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय ने बताया कि यह कार्रवाई केंद्रीय अपराध शाखा

0: लिंक क्लिक करंतु नहीं साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 मने रखंतु एसबीआई सचेतन रहंतु सुरक्षित रहंतु
1: प्रसर करूछु खंजणी भजन परिवेषण करिसंती बाबाजी चरण दास एवं तंको साथी बने

0: να ρημώσει σου έλα.
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
0: श्रोता बंधुमानों को ठहरे पुनः मन पकाई दूचु आज अपराह 5:30 मिनट रे युवाणी रे सुनिबे आलोचना आधुनिक कवितार नक्सा। आलोचना करिबे स्मृति रंजन सेठी। उदय भारत संध्या 6:30 मिनट रे थरे आलोचनार विषय रहिछे योजनार सफल रूपायन रे निर्भुल परिसंख्यानर आवश्यकता। आलोचना करिबे अंशुमान कामिला। इथला हमर केतोटी कार्यक्रम संपर्कीय सूचना। कार्यक्रम आपण माने सुनुछन्ति आकाशवाणी कटक केन्द्ररु। समय दिन गोटे बजे 50 मिनिट हेबाकु जाउछि। प्रथमे आम केन्द्ररु शुणन्तु ओडियारे संवाद, परे परे इंग्राजी एवं हिन्दीरे संवाद रिले करिबो आकाशवाणी दिल्लीरु।
2: ସମ୍ବାଦ ପଢୁଛନ୍ତି ପ୍ରଜ୍ଞା ପରିମିତା ଜେନା। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆଜି 65 ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ନାଫେଡ୍ର ନିଲାମ ପୋର୍ଟାଲର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଆମେରିକା ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣାକୁ ସ୍ୱାଗତ କଲା ଭାରତ। 16 ବ୍ରିକ୍ସ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଉପଦେଷ୍ଟା ବୈଠକରେ ଅଣପାରମ୍ପରିକ ଆତଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ଆଲୋଚନା। କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ବ୍ୟାପାର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜର୍ଜ କୁରିଆନ୍ ଏବଂ ଏଫ୍ଆଇଏଚ୍ ପ୍ରୋ ପୁରୁଷ

0: तलाश अभियान चला रहा है। लियोनेल मेसी फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने। अर्जेंटीना की टीम नॉकआउट में पहुंची। और लंदन में FIH हॉकी प्रो लीग के शुरुआती मैच में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे। एक रिपोर्ट।
1: इस वर्ष केंद्र सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 सम्मान मरणोपरांत प्रदान किए जाएंगे। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। आज राष्ट्रपति 65 विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करेंगी। इनमें टेनिस

0: हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 सम्मान मरणोपरांत प्रदान किए जाएंगे। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। आज राष्ट्रपति 65 विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करेंगी। इनमें टेनिस के दिग्गज विजय अमृतराज, अभिनेता ममूति, गायिका अलका याग्निक और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा जैसी प्रमुख हस्तियां शामिल हैं। वर्ष 1954 में स्थापित किए गए यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। पद्म पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान, लोक प्रशासन तथा व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए प्रदान किए जाते हैं। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पद्म पुरस्कार विजेताओं पर आकाशवाणी पीपल्स पद्म और आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। इस श्रृंखला के माध्यम से श्रोताओं को पद्म पुरस्कार विजेताओं के जीवन और उनके योगदान की जानकारी दी जा रही है।
2: मैदाप का काम सीखा, अंगूरी का काम सीखा है, मोटी चिकन मामूली का काम, तो इसमें सबसे बारीक काम एक मरूड़ी का ही होता है, तो मरूड़ी का काम जो है लगातार नहीं किया जाता है, ये बहुत ही फाइन वर्क होता है।
3: जब हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी का यूथ और माइनॉरिटी कम्युनिटी का यूथ एक दूसरे को समझने की कोशिश करे, वो ये जाने कि कश्मीर का जो एक नॉर्मल सिख के लिए वही गुलदस्ता जो कश्मीर जिसमें हमारे गांधी जी को किरण नजर आई थी या भारत का ताज के रूप में ये जो था उसी दस्ते को फिर से उजागर करने को बनाने के लिए हमने प्रयास करा।
1: ये कार्यक्रम आज एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रसारित होगा। इन्हें न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के साथ ही डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना साकार हो गया है। श्री शाह ने डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें देश के महानतम नेताओं में से एक बताया। उन्होंने कहा कि डॉ मुखर्जी के योगदान ने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
4: श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस राष्ट्र के बहुत बड़े नेताओं में शुमार होते हैं, जिन्होंने कभी जीवन में कुछ भी प्रसिद्धि के लिए नहीं किया, और उनकी बनाई पार्टी भारतीय जनसंघ जो अब भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानी जाती है, गंगा से लेकर बंगाल के गंगा सागर तक भारतीय जनता पार्टी का साथ, और मूठ जैसे सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने 60 साल के अंदर इनकी विचारधारा पर आगे बढ़ते बढ़ते आज देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया है।
1: नई दिल्ली में नेफेड के नीलामी पोर्टल के शुभारंभ पर श्री शाह ने कहा कि 23 जून भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इसी दिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने राष्ट्रीय एकता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। विभाजन काल को याद करते हुए उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल को भारत का हिस्सा बनाए रखने में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। गृहमंत्री ने अनुच्छेद 370 का भी जिक्र किया, जिसने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया था।
4: कश्मीर का राष्ट्रध्वज होता था, कश्मीर का संविधान अलग होता था, कश्मीर में एक अलग प्रधानमंत्री बैठते थे, कश्मीर में एक राष्ट्रपति भी बैठते थे। ये संकल्पना भारत की एकता और अखंडता के लिए बहुत खतरनाक। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक आंदोलन छेड़ा कि एक देश में दो विधान, दो निशान और दो प्रधान नहीं रहे।
1: इस अवसर पर गृहमंत्री ने किसानों की सीधी भागीदारी को मजबूत करने के लिए खरीद कार्यों में बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करने का आह्वान किया।
4: आने वाले दो सालों में सहकारिता मंत्रालय सुनिश्चित करेगा कि दलहन का एक दाना भी एनसीसीएफ और नाफेड में व्यापारियों के माध्यम से न आए, सीधा किसानों के माध्यम से आए, जिससे मुनाफा पूरा किसानों के पास। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है, अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर को नीचे तक पहुंचाना है, और उसमें मैं मानता हूं कि नाफेड और एनसीसीएफ ने भी दृढ़ता के साथ शुद्ध तरीके से काम करने की शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी जाकर परिणाम मिलेंगे।
1: नेफेड की प्रगति का जिक्र करते हुए श्री शाह ने कहा कि 12 साल पहले गंभीर वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहा यह संगठन आज 74 लाख किसानों की सेवा करने वाला एक मजबूत संस्थान बनकर उभरा है।
4: नाफेड ने एक प्रकार से नेफिक्स डॉट इन, दृष्टि, टीआरपी और नाफेड कल्याण, ये चार पहलों की शुरुआत की, तो वो क्रांतिकारी इसलिए कि नाफेड जो 2014 में बंद होने की कगार पर आ गया था, आज नाफेड ये सारी

0: 500 करोड़ के मुनाफे के साथ 30,000 करोड़ के टर्नओवर के साथ देश के 74 लाख किसानों की सेवा कर रहा है।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पिछले एक दशक में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी और किसान हितैषी बनाने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग करने हेतु नेफेड और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ की टीमों को बधाई दी। उन्होंने बताया कि इस पोर्टल की सहायता से किसानों को 48 घंटे के भीतर सीधे उनके बैंक खातों में भुगतान प्राप्त हो जाता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजय डोभाल ने कहा है कि होर्मुज जलडमरो मध्य के खुलने से विश्वभर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। श्री डोभाल ने आज सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में श्री डोभाल ने इस विषय पर चिंता व्यक्त की।
2: We need to be cognizant of the new security threats and challenges.
3: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रिर और भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि वे भारत और अमरीका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर सार्थक चर्चा की उम्मीद कर रहे हैं। इस बीच श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमरीका मजबूत द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में निर्णायक रूप से आगे बढ़ रहे हैं, जिससे दोनों देशों के लिए नए आर्थिक अवसर खुलेंगे और अमरीका भारत आर्थिक साझेदारी में महत्वपूर्ण मजबूती आएगी। अल्पसंख्यक कार्य और मत्स्य पशुपालन तथा डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तत्काल प्रभाव से उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर और मदुरई में 18 परिसरों में तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय ने बताया कि ये कार्रवाई केंद्रीय अपराध शाखा द्वारा वर्ष 2017 में दर्ज की गई प्राथमिकी पर आधारित है। पुलिस ने इस मामले में 2021 में आरोप पत्र दाखिल किया था। लखनऊ आग की घटना में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और उनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थियों की मौत हो गई और 9 घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। इस बीच फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के विशेषज्ञों और विशेष जांच दल के सदस्यों के एक संयुक्त दल ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: घटनास्थल का मुआयना करने के बाद एसआईटी के सदस्य और एडीजी लखनऊ जोन प्रवीण कुमार ने कहा कि उनकी टीम सभी पहलुओं की गहन जांच करेगी और हर विभाग की जिम्मेदारियों का विस्तार से आकलन करेगी। दूसरी ओर फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की 6 सदस्यीय टीम ने आग लगने के कारणों का पता लगाने और घटनाक्रम स्थापित करने के लिए सबूत इकट्ठा किए। इस बीच लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इमारत को गिराने का नोटिस जारी कर दिया है। 3 मंजिला इमारत के अनाधिकृत निर्माण को लेकर 2016 में भी इसे गिराने का आदेश जारी किया गया था, लेकिन 2 महीने से भी कम समय में इसे रद्द कर दिया गया था। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: अयोध्या में राम मंदिर में दान और चढ़ावे में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही 3 सदस्यीय विशेष जांच दल एसआईटी ने आज अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। राज्य सरकार ने कथित वित्तीय अनियमितताओं और धन के दुरुपयोग की जांच के लिए इस उच्च स्तरीय पैनल का गठन किया था। एसआईटी के सदस्यों ने पिछले सप्ताह कई संदिग्धों और मंदिर ट्रस्ट के अधिकारियों से पूछताछ की। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में अलनीनो के मौसम पर पड़ने वाले प्रभाव और कृषि पर इसके असर की समीक्षा के लिए एक बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री चौहान ने कहा कि अलनीनो की संभावित स्थितियों को देखते हुए सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने और कृषि तथा खेती पर पड़ने वाले किसी भी प्रतिकूल प्रभाव

0: को कम करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। महाराष्ट्र में मॉनसून फिर से सक्रिय हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुंबई और आसपास के उपनगरों में आज लगातार तीसरे दिन भी बारिश हो रही है।
1: मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून मध्य अरब सागर के बाकी हिस्सों, मुंबई सहित महाराष्ट्र के कुछ और हिस्सों और मध्य व पूर्वी भारत के कुछ इलाकों में आगे बढ़ गया है। आज पुणे जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले कुछ घंटों में मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, पुणे, रायगढ़ और रत्नागिरी के घाट इलाकों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बड़ी प्रतीक्षा के बाद आई इस बारिश से नागरिकों को राहत मिली है। अगले कुछ दिनों में महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों में बारिश होने से किसान बुआई का काम शुरू कर सकेंगे। कृषि विभाग ने किसानों को जरूरी मात्रा में बारिश होने तक बुआई में जल्दबाजी न करने की सलाह दी है। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर और पश्चिम बंगाल के तराई वाले कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश के ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, ओडिशा और तेलंगाना में भी कल तक तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और उत्तराखंड में आज गरज के साथ वर्षा और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूरदर्शी नेता, प्रख्यात शिक्षाविद और देशभक्त डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि डॉ मुखर्जी ने निडर होकर देश की एकता और अखंडता का समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना जीवन देश के विकास के लिए समर्पित कर दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका ने ईरान पर अस्थायी रूप से बड़े प्रतिबंध हटा दिए हैं। इनमें ईरानी मूल के कच्चे तेल, पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उत्पादों के उत्पादन, वितरण और बिक्री को अधिकृत किया गया है। अमेरिका के राजकोष विभाग ने बताया कि 60 दिन के लिए जारी किया गया सामान्य लाइसेंस 21 अगस्त तक प्रभावी होगा। फीफा विश्व कप में आज अमेरिका के सांता क्लारा में ग्रुप जे मैच में अल्जीरिया ने पहली बार खेल रहे जॉर्डन को 2-1 से मात दे दी। लियोनेल मेसी फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने। एक महत्वपूर्ण मुकाबले में अर्जेंटीना ने कल रात ग्रुप जे मैच में ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराकर नॉकआउट में प्रवेश किया। एफआईएच प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरा हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कहा, होर्मुज जलडमरू मध्य के खुलने से विश्वभर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में तमिलनाडु में 18 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ଏତେବେଳେ ଯାଏଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କଲୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ। ଆକାଶବାଣୀ କଟକ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣିପାରିବେ ଟିକେ ପରେ।
3: ବନ୍ୟା ହେଉ ବା ମହାବାତ୍ୟା, ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ
4: ଗାଁରୁ ସହର ଯାଏ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ
3: ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ,
4: ଜୁଆଙ୍ଗ ଓ ସାନ୍ତାଳଙ୍କ ଠାରୁ ବଣ୍ଡା ଏବଂ କୋୟାଙ୍କ ଯାଏ, ସବୁରି ଭାଷାରେ
3: କେବଳ ଆକାଶବାଣୀ।

0: आम परंपरा आम कला संस्कृति आकाशवाणी ही रखिचे साइति।
1: बन्या हेउ बा महावात्या सबु परिस्थिति रे
2: गारु सहर जाए सबु स्थान रे
1: आबाल वृद्ध बनिता समस्तंक पाई
2: जुआंग ओ सांतालंक ठारु बंडा एवं कोयांक जाए सबुरी भाषा रे
1: केवल आकाशवाणी।

0: କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶେଷ ଗୀତ ନେଇଛୁ ଖରନ୍ଦା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରୁ। ଦ୍ୱୈତକଣ୍ଠରେ ଗାଇଛନ୍ତି ଭୂପିନ୍ଦର ଏବଂ ରୁନା ଲୈଲା।
1: दीवाना
2: एक दीवाना शहर में
1: एक दीवाना नहीं एक दीवानी भी
2: दो दीवाने शहर में।

0: Inner Cement, the perfect concrete choice.
1: Work from home. Hi, salary. Matra guti likre. Are wow.
2: अजणा लिंक्स उपरे क्लिक करंतु नाही आरबीआई कहे
3: सचेतन होंतु सतर्क रहंतु
4: निवेदितांको कंठरे कार्यक्रमर परवर्ती गीतटी

0: ଶୁଣିଲେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୁବବାଣୀ।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
0: अपन मने कार्यक्रम सुनचंदी आकाशवाणी कटक केंद्ररो।
2: नमस्कार श्रोता बंधु, संध्या 6:00 न्यूज हेडलाइंस को आपण मानको स्वागत करुछि। मु महेश्वर साहू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नवा दिल्ली रे आज संध्या रे 65 जन को द्वितीय पर्याय पद्म पुरस्कार प्रदान करछन्ते। एही उपलक्ष्य राष्ट्रपति भवन रे आयोजित एक स्वतंत्र कार्यक्रम रे अन्य मानको सहित ओडिसा रो सीमांचल पात्र शरद कुमार पात्र एवं चरण हेम्ब्रम राष्ट्रपति को ठारु पद्म पुरस्कार ग्रहण करछन्ते। तमिलनाडु गैस लीक दुर्घटना रे ओडिया श्रमिकों मृत्यु संख्या 7 को वृद्धि पाई। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी एही घटना रे गभीर दुख प्रकाश करिबा सह मृतकों आत्मीयक सहायता राशि को 10 लाख टंका को वृद्धि करछन्ते। रथयात्रा सुरखुरी रे परिचालना नै आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन अध्यक्षता रे द्वितीय समन्वय बैठक अनुष्ठित हो जाइछि। पुरीवासी पई स्वतंत्र दर्शन व्यवस्था सह समस्त भक्तों पर दर्शन सुव्यवस्था कर मंत्री सूचना देते। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी आज 73वां श्राद्धवार्षिकी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान गभीर श्रद्धांजलि जनाई। आसंता जुलाई 5 तारीख में OTET परीक्षा कर, जून 28 पूर्व भली RI अमीन परीक्षा हो माध्यमिक शिक्षा परिषद पक्ष सूचना दिया जाय छे। पूरा राज्य को अग्रसर होई दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु। गत 24 घंटा मध्य नवरंगपुर जिला तेंतुली खुंटी ब्लॉक रे सर्वाधिक 72 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड करा जाय छे। आसंता 7 दिन अर्थात 30 तारीख पर्यंत राज्य सब अंचल मध्यम धरण वर्षा लागि रहिबा नै आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पूर्वानुमान करिछि। वर्तमान पई न्यूज हेडलाइन सेति कि आपण माने परवर्ती हेडलाइन सुनि परिबे संध्या 7:00 रे।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
3: यहाँ खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती।
4: बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों

0: के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है।
1: यहाँ होती है सीधी सटीक और सच्ची खबरें।
0: मैं मन से मानता हूँ कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर,
1: क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल डीडी न्यूज। केवल खबर, पूरी खबर।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
3: अपन मने कार्यक्रम सुनु छन्दे आकाशवाणी कटक केन्द्ररु। सुनंतु चलित अधिवेशनर कार्यक्रम संपर्कले सूचना। गोस्वामी तुलसीदास विरचित श्रीरामचरित मानसर 57वां भाग संध्या 6:10 उदय भारत संध्या 6:30 एथिरे शुणिबे योजनार सफल रूपायणरे निर्भुल परिसंख्यानर आवश्यकता। आलोचना करिबे अंशुमान कामिला। ओडिया कथाचित्र गीत राति 17:02। जिला हलचल शुणिबे बलांगीर जिला संपर्कें राति 17:25। कृषि संसार राति 7:30 एथिरे शुणिबे कृषिजीवी महिलांक पोषण निरापत्ता संपर्कें डॉक्टर अमिताराणी पात्रों सहित आलोचना। हिंदी चलचित्र गीत राति 8:02। हिंदी शिक्षा कार्यक्रम राति 8:30। राति 9:30 प्रचार करिबो रूपक शेष हेब ग्रीष्मर आसर। रचना डॉक्टर शांतनु कुमार रथ। प्रयोजना बसंत महांती। श्रोतांक अनुरोध रे ओडिया कथाचित्र गीत प्रचार करिबो राति 10:30। आसंताकालीर कार्यक्रमर सूचना। भक्तिगीतर कार्यक्रम वंदना सकाळ 6:05। सकाळ 6:35 अनुचिंता उपस्थापना शारदा प्रसाद कर। श्रीमद भागवतर 75वां भाग प्रचार करिबो सकाळ 6:40। आमर स्वास्थ्य सकाळ 17:10 एथिरे शुणिबे आंटीबायोटिक व्यवहारर सतर्कता। आलोचना करिबे डाक्टर रवि नारायण रथ। सकाळ 17:25 प्रभात परिक्रमा। सकाळ 17:35 कथिकारे शुणिबे सुस्थ ओ दीर्घ जीवनर चाबिकाठी इंद्रधनु आहार। आलोचक शैलेन्द्र द्विवेदी। रागमंजूरी सकाळ 17:40 कंठशिल्पी तन्मय कुमार होता। संगीत ए महेश्वर राव। वैदेहिक विलासर 64वां भाग सकाळ 8:45। दिन 10:00 प्रचार करिबो नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम। मूल संस्कृत रचना महाकवि कालिदास। हिंदी बेतारूपांतर अंजलि शर्मा। ओडिया अनुवाद अर्चना मिश्र। प्रयोजना मुरलीधर साहू। आम गीत दिन 11:10 एथिरे आधुनिक गीत गाई दीपक कुमार कर ओ भुवनेश्वरी मिश्र। दिन 11:30 प्रचार करिबो दासकाठा गीत। परिवेशन करिबे माटिया साहू एवं साथी। दिन 9:10 प्रचार करिबो एकतारा भजन। परिवेशन करिबे सुरेन्द्र कुमार साहू। दिन 9:20 नारी महल एथिरे शुणिबे स्वर संभार। युववाणी प्रचार करिबो अपराह 5:30। संध्या 6:10 गोस्वामी तुलसीदास विरचित श्रीरामचरित मानसर 58वां भाग। आकाशवाणी राउरकेला केन्द्र द्वारा प्रस्तुत उज्जवल आम देश। संध्या 6:30। राति 17:25

दीर्घ काल तक राज्य करते हुए मनु को जब वृद्धावस्था का आभास मिला तो उनके मन में ग्लानी हुई कि हरि के भक्ति बिना जीवन अकारत बीत गया। अतः स्वेच्छा से पुत्र को राजकाज सौंपकर पत्नी शत्रुपा के साथ उन्होंने वन की राह ली। वर्षों के तीर्थाटन तथा हजारों वर्षों की कठोर तपस्या के बाद दंपति को प्रभु के साक्षात दर्शन प्राप्त हुए। ऐसा अद्भुत और अनुपम रूप मनु दंपति की आंखें जैसे आघातीन न थीं। दंपति की भक्ति, समर्पण तथा कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर प्रभु ने उन्हें मनचाहा वर मांगने को कहा, लेकिन उनके साक्षात दर्शन से ही मनु शत्रुपा की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई थीं। अतः मांगने को रहा क्या था। फिर भी मन में एक लालसा थी जिसका पूरा होना सहज भी था और कठिन भी, अतः उसे प्रकट करने में उन्हें संकोच हो रहा था। जब प्रभु ने बार बार उन्हें निसंकोच हो मन चाहा वर मांग लेने को कहा तो मनु बोले, हे नाथ, मेरी सच्ची साध है कि मुझे आपके समान ही पुत्र प्राप्त हो। मनु की प्रीति देख करुणा निधान बोले, ऐसा ही होगा, किंतु हे राजन, अब मैं अपने समान दूसरा कहां खोजूंगा, अतः स्वयं आकर ही आपका पुत्र बनूंगा। इसी प्रकार शत्रुपा को भी उनका मनचाहा वरदान प्राप्त हुआ।

0: नमस्ते श्रोताओं, ये आकाशवाणी कटक है। आज के हिंदी शिक्षा कार्यक्रम में चर्चा के विषय है संख्यावाचक विशेषण। हमारे साथ गुरुजी अजीत प्रसाद महापात्र उपस्थित हैं। उनके साथ भाग ले रहे हैं छात्रा आयशा महापात्र। तो चलिए सुनते हैं संख्यावाचक विशेषण के बारे में।
1: प्रणाम गुरुजी।
2: हाँ जीती रहो, बैठो। अच्छा, पिछली कक्षा में मैंने तुम्हें विशेषण के बारे में पढ़ाया था।
1: जी।
2: अच्छा, कौन से विशेषण पर हमारी चर्चा हुई थी?
1: गुणवाचक
2: विशेषण और सार्वनामिक विशेषण पर चर्चा हुई थी। तुम्हें याद है सार्वनामिक विशेषण के दो भेद के बारे में चर्चा हुई थी, क्या क्या है?
1: मौलिक सार्वनामिक विशेषण और यौगिक
2: सार्वनामिक विशेषण, इन पर चर्चा हुई थी। और गुणवाचक विशेषण पर भी चर्चा हुई थी। तुम्हें याद है गुणवाचक विशेषण की परिभाषा क्या है?
1: जिस शब्द से
2: संज्ञा
1: का
2: गुण,
1: दशा,
2: स्वभाव,
1: आकार, रंग, स्थान, काल,
2: इन पर बोध होता है इनका, तो वो गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, तो आज हम पढ़ाएंगे संख्यावाचक विशेषण क्या है, परिमाण बोधक विशेषण क्या है। ठीक है, अच्छा इन शब्दों को थोड़ा पढ़ो। हाँ,
1: आगामी
2: ठीक है, और
1: पिछला
2: दाया बाया,
1: सफेद।
2: ये जो है, ये जो शब्द हैं, ये शब्द क्या हैं सब? जैसे एक, दो, दूसरा, तीसरा, चौगुना, ये सब क्या हैं?
1: संख्यावाचक।
2: ये सब संख्यावाचक शब्द हैं। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या सूचित होती है उसे व्याकरण में संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। बताओ क्या कहा मैंने?
1: जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या
2: सूचित होती है
1: उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं।
2: संख्यावाचक विशेषण के तीन भेद होते हैं। एक है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और एक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण और एक परिमाण बोधक संख्यावाचक विशेषण। जब विशेषण से निश्चित संख्या का बोध हो तो वह निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। जैसे दो लड़के, यहाँ जो दो है, दो लड़के जा रहे हैं, चार लड़कियां खेल रही हैं। हम यहाँ दो लोग बैठे हैं इस कमरे में, हम दो लोग बैठे हैं, तो ये जो दो है, चार है, दस है, पांच है, ये किस प्रकार के विशेषण है?
1: संख्यावाचक।
2: ये निश्चित, बोलो निश्चित संख्यावाचक विशेषण। कहो
1: इसमें निश्चित संख्यावाचक विशेषण।
2: हाँ, क्योंकि इसमें निश्चितता का पता चल जाता है। चार लड़के, दो व्यक्ति, पांच लड़कियां, पांच, ये जो है ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, समझ
1: जी,
2: गई
1: जी।
2: जब वस्तु की जो है संख्या अनिश्चित हो तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे कुछ लोग वहाँ बैठे हैं, कोई आदमी वहाँ बैठा है, कोई आदमी वहाँ सो रहा है, ये जो है कोई, ये जो है कुछ, ये सब है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। उदाहरण बताओ। कुछ लोग कुछ, कोई, ये सब जो है मतलब निश्चितता नहीं है। जैसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण मैंने बताया था, दो लड़के, वहाँ दो है या है क्या है? कुछ लड़के, ये कुछ जो है, कोई जा रहा है। ठीक है
1: जी।
2: फिर परिमाण बोधक, जब वस्तु का परिमाण का बोध होता है वो परिमाण बोधक, इस पर भी चर्चा हम करेंगे। बहुत मिठाइयाँ, ये जो बहुत है ये परिमाण बोधक विशेषण
1: जी।
2: समझ रही हो
1: जी।
2: तो ये जो है इसके भी कई उपभेद हैं। एक में है गणनावाचक, क्या कहा?
1: गणनावाचक।
2: हाँ, जिसको तुम गिन सकते हो, जैसे एक, दो, पाँच, तुम कुछ बताओ गणनावाचक उदाहरण।
1: एक
2: तो मैंने कहा,
1: ग्यारह,
2: बस हो गया। हाँ, ये गणनावाचक। ठीक है
1: जी।
2: और एक दूसरा जो है वो है क्रमवाचक। क्रमवाचक का उदाहरण क्या है? दूसरा, तीसरा, चौथा, तुम कहो। पांच को क्या कहोगे?
1: पांचवा।
2: और षष्ठ को
1: छठा।
2: तुम पढ़ती हो नौवीं में, कहोगे नौवीं। ये जो है क्रमवाचक। और एक आवृत्तिवाचक है, इसका उदाहरण जानते हो? दूना, तिगुना, चौगुना, ये सब आवृत्तिवाचक है। ठीक है, क्या कहा उदाहरण मैंने? दूना,
1: तिगुना,
2: चौगुना, ये सब है किस प्रकार? आवृत्तिवाचक विशेषण। और एक समुदायवाचक है, जैसे दोनों, तीनों, चारों, ये है समुदायवाचक।

0: सूचक प्रत्येक बोधक एक है, जैसे हरेक हर एक प्रत्येक, ये जो प्रत्येक बोधक ठीक है याद होगी
1: जी,
0: गणना वाचक और आवृत्ति वाचक, मैंने क्या कहा और क्रम वाचक और समुदाय वाचक और
1: प्रत्येक
0: हाँ प्रत्येक वाचक, ये सब है ठीक है। इसके भी दो भेद है गणना वाचक के, एक पूर्णांक है और एक अपूर्णांक है। पूर्णांक है 2-4, अपूर्णांक है आधा पैन पैना या सवा, ये सब अपूर्णा बोधक ठीक है। अभी हम आपको पढ़ाएंगे परिमाण बोधक विशेषण ठीक है, ये भी संख्यावाचक विशेषण का एक मुख्य भेद है। यह किसी, अभी मैंने बताया उसके बारे में थोड़ा, अभी मैं विस्तार से बता रहा हूँ। यह किसी वस्तु की नाप या तौल का बोध कराता है, जैसे शेर भर दूध, शेर भर दूध ये परिमाण हो गया, तोला भर सोना, कुछ किताबें, थोड़ा पानी, ये जो थोड़ा है, शेर भर है, तोला भर है, ये सब है परिमाण बोधक विशेषण। बता मैंने क्या कहा परिमाण बोधक विशेषण,
1: यह किसी वस्तु की नाप
0: या तौल जो हम वजन करते हैं, नाप या तौल का बोध
1: करता है।
0: हाँ, जैसे उदाहरण शेर भर दूध, शेर एक किलोग्राम जैसे कहती हो, पहले शेर चलता था, छटांग चलता था, आजकल किलोग्राम है, मीटर है, लीटर है, ठीक है। शेर भर दूध, तोला भर सोना, इसके भी दो भेद हैं, जानती हो क्या क्या है?
1: नहीं गुरुजी।
0: इसके दो भेद हैं, एक है निश्चित परिमाण बोधक और दूसरा है अनिश्चित परिमाण बोधक। और निश्चित का उदाहरण है 4 सिर दूध, 10 हाथ, 2 पांव, ये जो है निश्चित परिमाण बोधक। अनिश्चित का उदाहरण बहुत दूध, शव धन, ये जो बहुत सब ये है अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण। कहो और एक बार कहो इसके कितने भेद हैं?
1: दो भेद हैं।
0: क्या क्या है?
1: निश्चित परिमाण बोधक, अनिश्चित परिमाण बोधक,
0: बोधक विशेषण कहो। हाँ, उदाहरण बताओ निश्चित का।
1: 4 शेर दूध,
0: 4 हो गया अभी निश्चित संख्या, 4 शेर है। और अगर ये होगा बहुत दूध हो अगर तुम कहोगी तो हो जाएगा अनिश्चित परिमाण बोधक ठीक है। अभी हमने तुम्हें पढ़ाया विशेषण क्या है, विशेषण के कितने भेद हैं ठीक है, सर्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाण बोधक विशेषण, इन पर विस्तार से चर्चा हुई। अच्छा, तुम्हें पता है एक प्रविशेषण होता है, प्रविशेषण जानती हो?
1: नहीं गुरु जी।
0: सुनो, प्रविशेषण हिंदी में कुछ विशेषणों के भी विशेषण होते हैं, इन्हें प्रविशेषण कहा जाता है। विशेषण के विशेषण, प्रविशेषण माने विशेषण के विशेषण। क्या कहा जोर से?
1: हिंदी में कुछ विशेषण के विशेषण
0: होते हैं। जैसे उदाहरण सुनो, गोपाल तेज दौड़ता है, हम कहेंगे तेज हो गया विशेषण। अगर हम कहेंगे गोपाल बहुत तेज दौड़ता है तो इसमें कौन सा प्रविशेषण है?
1: बहुत
0: ठीक है। क्षत्रिय बड़े साहसी वीर है, बड़े साहसी, खाली साहसी कहने से विशेषण, किस प्रकार का विशेषण होगा साहसी?
1: प्रवर।
0: गुणवाचक, साहसी शब्द मैं पूछ रहा हूँ, साहसी शब्द जो है ये गुणवाचक विशेषण है। और बड़े साहसी, जो बड़े हो गया ये हो गया
1: प्रविशेषण,
0: क्योंकि विशेषण का विशेषण बताता है ठीक है। वह एक लड़की है, वह लड़की सुंदर है, सुंदर जो है ये विशेषण है। लेकिन हम कहेंगे वो लड़की बहुत सुंदर है, अत्यंत सुंदर है, तो ये जो बहुत है अत्यंत है ये है प्रविशेषण। समझ रही हो
1: जी?
0: विशेषण पर चर्चा हुई, प्रविशेषण के बारे में मैंने तुम्हें बताया। और एक बात याद रखो, एक है विशेष्य विशेषण और एक है विधेय विशेषण। क्या कहा मैंने?
1: एक विशेष्य विशेषण,
0: हाँ,
1: और एक विधेय
0: विधेय विधेय कहो
1: विधेय
0: हाँ,
1: विशेषण
0: विशेषण। विशिष्य विशेषण याद रखो, जो संज्ञा के पहले आए, यानी विशेष्य के पहले अगर प्रयोग हुआ है तो हो गया विशेष विशेषण। क्या कहा मैंने बताओ?
1: जो विशेष्य के पहले आए,
0: हाँ, वे हैं विशेष विशेषण। मैंने सुरेश चालाक लड़का है, चालाक।

0: और विशेषण जो है अच्छा लड़का, विशेष विशेषण, ये जो है विशेषण विशेष्य और क्रिया के बीच आए तो वो हो गया विधेय विशेषण। विशेषण जो है विशेष्य और क्रिया के मध्य में आए, बीच में आए
1: जी,
0: तो वो हो जाएगा विधेय विशेषण। जैसे उसकी गाय काली है, हा? उसकी गाय काली है, गाय हो गया संज्ञा, काली हो गया विशेषण। किस प्रकार का विशेषण? ना विधेय विशेषण, क्योंकि क्रिया जो है, है? और ये विशेष्य है काय, गाय और है, बीच में ये शब्द आ गया काली। ठीक है, मेरा भाई बदमाश है, मेरा भाई बदमाश है, नटखट है, दुष्ट है, है? कल स्वभाव का है, तो ये हो जाएगा विधेय विशेषण। ठीक है, दो बातें याद रखो, एक विशेष्य विशेषण जो विशेष्य के पहले प्रयोग होता है वो भी विशेषण है, और विधेय विशेषण जो विशेषण विशेष्य और क्रिया के बीच प्रयोग होता है वो होता है विधेय विशेषण। मालूम हो गया
1: जी,
0: है? और कुछ ध्यान देने की बातें है याद रखो, और इन मुख्य बातों को भी तुम लिखो और याद रखोगे। ठीक है
1: जी,
0: विशेषण के लिंग वचन आदि विशेष्य के लिंग वचन के अनुसार होते हैं, चाहे पहले या हो प्रयोग हो या पीछे हो कोई बात नहीं, लेकिन विशेषण के लिंग वचन आदि विशेष के अनुरूप होते हैं। जैसे अच्छी लड़की पढ़ रही है, अगर तुम कहोगी अच्छे लड़के, क्या कहोगी क्रिया में?
1: अच्छे लड़के पढ़ रहे हैं,
0: पढ़ रहे हैं, ये कहना होगा। तो ये जो है लिंग वचन आदि इसमें परिवर्तन हो जाता है। लड़की स्त्रीलिंग है इसलिए अच्छी लड़की, गाय स्त्रीलिंग है, तुम कहोगी अच्छी गाय, सफेद गाय जा रही है। अगर तुम गाय के बदले में बैल शब्द प्रयोग करोगी, पुलिंग शब्द बैल, तो क्या कहोगी? अच्छा बैल, मोटा बैल, तगड़ा बैल, हैं? ऐसे कहोगी। ठीक है, माने विशेषण के लिंग वचन आदि विशेष्य के लिंग वचन के अनुसार प्रयोग होते हैं। ठीक है
1: जी।
0: और एक नियम है, यदि एक ही विशेषण के अनेक विशेष्य हो, क्या कहा मैंने? यदि
1: एक विशेषण के अनेक विशेषण,
0: हाँ, अनेक विशेषण हो तो विशेषण के लिंग और वचन निकट वाले यानी समीप में जो विशेष्य है उसके लिंग वचन के अनुसार होते हैं। बताओ मैंने क्या कहा?
1: यदि एक ही,
0: हाँ, विशेषण के
1: अनुसार
0: अनेक विशेषण हो, यदि एक
1: विशेषण के अनेक विशेषता हो,
0: विशेषण हो, एक ही विशेषण के अनेक संज्ञा शब्द या विशेष्य शब्दों, विशेषण नहीं विशेष्य हो, तो विशेषण के लिंग और वचन किसके अनुसार? ना कहो समीप वाले, कहो
1: समीप वाले विशेष्य
0: के,
1: के
0: लिंग,
1: लिंग
0: जोर से वचन के अनुसार,
1: वचन के अनुसार
0: होते हैं,
1: होते हैं।
0: जैसे नए लड़के और लड़कियां, नए लड़के और लड़कियां, यहाँ नए क्यों हुआ? ना लड़के के कारण, किसके अनुसार हुआ नए?
1: जो लड़के के,
0: लड़के किस वचन में है? बहुवचन
1: जी,
0: लड़के हो गया बहुवचन, लड़का हो गया एकवचन, आकार होके बहुवचन होता है। नए लड़के और नई लड़कियां, अगर लड़कियां कहोगी तो नई हो जाएगा, क्योंकि निकट में है उसके अनुसार परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो आज हमारी चर्चा हुई विशेषण के भेदों पर और प्रविशेषण पर और विशेष्य विशेषण तथा विधेय विशेषण पर और कुछ मुख्य बातों के बारे में मैंने तुम्हें बताया। ठीक है
1: जी,
0: समझ गई
1: जी।
0: इसको और एक बार पढ़ो, याद रखो, फिर अगली कक्षा में आओ, मैं प्रश्न करूंगा। अभी समय हो गया है स्टूडियो में, अभी यहाँ हम रखते हैं।
1: प्रणाम गुरुजी।
0: हाँ, खुश रहो।
2: अभी आप लोग सुन रहे थे संख्या वाचक विशेषण के बारे में, हमें शिक्षा दे रहे थे अजीत प्रसाद महापात्र, उनके साथ थे छात्रा आयशा महापात्र।
3: आपण मैंने कार्यक्रम शुणुंट आकाशवाणी कटक केन्द्र परवर्त कार्यक्रम रिले कर प्रचार कर आकाशवाणी दिल्ली।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा।

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सुरक्षा सहयोग मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा जैसी चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नागरिक अलंकरण के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पुरस्कार पाने वालों में पत्रकार पी नारायणन, पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और आर माधवन तथा गायिका अलका याग्निक शामिल। सरकार ने कहा, अल नीनो के कारण कमजोर मॉनसून के संभावित असर से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां की जा रही हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। जर्मनी में जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत का दबदबा जारी। आज भारत ने 2 रजत सहित 3 पदक जीते। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में पुर्तगाल का सामना उज्बेकिस्तान से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा से लेकर उभरती प्रौद्योगिकियों तक की साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने आज शाम ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों तथा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने, वैश्विक दक्षिण की प्राथमिकताओं का समर्थन करने और एक सुरक्षित, अधिक संरक्षित तथा समावेशी विश्व में योगदान देने का प्रयास करेगी। इस बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक आज नई दिल्ली में हुई। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और शिष्टमंडल के प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। इस दौरान पारंपरिक सुरक्षा के अलावा ऊर्जा, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला और साइबर सुरक्षा तथा आतंकवादी नेटवर्क द्वारा इस्तेमाल की जा रही नई तकनीकों और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने 2026 में भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया। बैठक के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संयुक्त रूप से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने नागरिक देवोभव की सोच के साथ अधिकारियों से शासन में नागरिकों को केंद्र में रखने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सहायक सचिव के रूप में नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2024 बैच के 183 प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत की। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा सिविल सेवकों से 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को केंद्र में रखते हुए कार्य करने का आह्वान किया। श्री मोदी ने युवा सिविल सेवकों से दृढ़ संकल्प, नवाचार और नागरिक केंद्रित शासन के साथ राष्ट्र निर्माण के लिए स्वयं को समर्पित करने का आग्रह किया। विकसित भारत 2047 की परिकल्पना का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले दशकों में हर नीति और प्रशासनिक निर्णय का उद्देश्य विकसित भारत का निर्माण होना चाहिए। श्री मोदी ने युवा अधिकारियों से राष्ट्र निर्माण में अपने योगदान का निरंतर मूल्यांकन करने का भी आग्रह किया। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक हैं। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में तथा पूर्व न्यायाधीश के टी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया। एक रिपोर्ट।
2: इस साल सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की थी। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। आज के समारोह में पद्म भूषण 7 लोगों को दिया गया, जिनमें पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और प्रख्यात गायिका अलका याग्निक शामिल हैं। वहीं राजनेता शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा 57 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए गए, जिनमें क्रिकेटर रोहित शर्मा, मशहूर अभिनेता आर माधवन और प्रसार भारती के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पत्ति शामिल हैं। वहीं प्रसिद्ध टेलीविजन और फिल्म अभिनेता सतीश शाह को मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल रहे। सुपर्णा सेके के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकार अल नीनो के कारण मॉनसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
1: अल नीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब यह है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है, और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
0: श्री चौहान ने कहा कि राज्यों को दलहन, मोटे अनाज और तिलहन जैसी फसलों को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है। इन फसलों को कम पानी की आवश्यकता होती है और जो कठिन परिस्थितियों में भी अच्छी पैदावार दे सकती हैं। खान मंत्रालय ने 56 महत्वपूर्ण खनिज खंडों और 11 खनन अन्वेषण लाइसेंस खंडों की सफल नीलामी के साथ देश के खनिज मिशन को गति प्रदान की है। मंत्रालय ने नीलामी के सातवें चरण के अंतर्गत 10 महत्वपूर्ण खनिज खंडों की सफलतापूर्वक नीलामी की है। इससे अब तक नीलाम किए गए खंडों की कुल संख्या 56 हो गई है। कुल मिलाकर अब तक 88 खंडों की नीलामी हो चुकी है। इस चरण में ग्रेफाइट, दुर्लभ खनिज, वेनेडियम, टाइटेनियम, ग्लोकोनाइट और रॉक फॉस्फेट जैसे खनिज शामिल थे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए ट्रकों और बसों से बदलने के लिए सरकार डेमलर इंडिया कमर्शियल व्हीकल्स के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। मंत्रालय ने कहा कि इस समझौते के अंतर्गत मूल उपकरण निर्माता योजना के अंतर्गत खरीदे गए ट्रकों और बसों के एक्स शोरूम मूल्य पर 8% की छूट प्रदान की जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अंतर्गत दोनों मंत्रालयों में राष्ट्रीय परिवहन गतिशीलता और किफायती आवाजाही व्यवस्था की स्थापना की जाएगी। केंद्र का मुख्य उद्देश्य सड़क और परिवहन क्षेत्र में दीर्घकालिक योजना, निवेश और नीति निर्माण में सहयोग के लिए उपयोगी अंतर्दृष्टि प्रदान करना होगा। विदेश मंत्रालय ने आज बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी क्षेत्र में मौजूद हैं। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि अमरीका और ईरान के बीच समझौता ज्ञापन होने के बाद से भारत आने वाले 11 जहाजों ने होर्मुज जलडमरू मध्य को पार किया है। इनमें भारतीय ध्वज वाले कच्चे तेल के 3 टैंकर के अलावा विदेशी ध्वज वाला एक एलपीजी वाहक पोत, एक कच्चा तेल टैंकर और उर्वरक लदे 6 मालवाहक जहाज शामिल हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्दी होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर सकेंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि कतर में हुए धमाके में मारे गए भारतीय नागरिकों के शवों को वापस लाने के लिए भारत सरकार कतर के साथ मिलकर काम कर रही है।
2: रास लफान परियोजना में जब वहां एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहां के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
0: ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कल ईरान, इथियोपिया, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की।
2: ब्रिक्स एनएसए की मीटिंग चल रही है, कल हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की चीन के विदेश मंत्री और वहां के पॉलिट ब्यूरो के जो चीफ हैं उनसे भी हमारे एनएसए की द्विपक्षीय वार्ता हुई और इसमें उन्होंने जो हमारे द्विपक्षीय संबंध हैं उसके बारे में जिक्र किया और ये सकारात्मक बातचीत थी।
0: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने फिलिस्तीन के साथ अच्छे संबंधों के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि हमने मानवीय आधार पर फिलिस्तीन को सहायता भी प्रदान की है।
2: सालों से फिलिस्तीन के साथ हमारे अच्छे संबंध रहे हैं और हम लोगों ने उनको विकास की साझेदारी के तहत कई एक सारे प्रोजेक्ट्स मुहैया कराया है। ये प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने द्विपक्षीय तरीके से और साथ ही साथ उनरवा के माध्यम से भी मुहैया कराया है और मानवीय आधार पर उनको सहायता भी प्रदान की है और आगे भी ये कार्य हमारा चलता रहेगा।
0: भारत संयुक्त अरब अमीरात रक्षा साझेदारी पर श्री जायसवाल ने कहा कि हाल के कुछ वर्षों में संयुक्त अरब अमीरात के साथ भारत के रिश्तों में काफी सुधार हुआ है और रक्षा साझेदारी

0: केस में प्रमुख भूमिका है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मंगोलिया के विदेश मंत्री बत्सेसेग बटमुख और उद्योग तथा खनन मंत्री गोंगोर दमदनियाम के साथ मंगोल तेल शोधन परियोजना के निर्माण स्थल का दौरा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और मंगोलिया की मैत्री परियोजना में निरंतर प्रगति हो रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में अमरीका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के नेतृत्व वाले शिष्टमंडल से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि इस दौरान दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी 2026 के परिणाम आज घोषित कर दिए। उम्मीदवार सीयूईटी के आधिकारिक पोर्टल पर अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। एजेंसी के अनुसार इस वर्ष प्रवेश परीक्षा में 11 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ अशोक कुमार लाहिड़ी ने कहा है कि पिछली तिमाही में भारत का कुल व्यापार 5.4% बढ़ा है। आज नई दिल्ली में ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट का नवीनतम संस्करण जारी करते हुए उन्होंने ये बात कही। श्री लाहिड़ी ने कहा कि पिछली तिमाही में भारत का निर्यात 1.84 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया और आयात में 6.5% की वृद्धि हुई। उन्होंने कहा कि भारत को सिर्फ पेट्रोल पर निर्भर न होकर दूसरे विकल्पों की ओर बढ़ना चाहिए।
1: डाइवर्सिफिकेशन मतलब सिर्फ पेट्रोलियम में निर्भर होना नहीं चाहिए, तो इसलिए रिन्यूएबल एनर्जी, बायोगैस, विंड, सोलर, न्यूक्लियर वो करना चाहिए। और दूसरी चीज है वी शुड एक्सप्लोर मोर सो दैट वी कैन हैव मोर डोमेस्टिक पेट्रोलियम। थर्ड इज वी शुड डाइवर्सिफाई आवर सोर्सेज। एक जगह कुछ गड़बड़ हो गया तो हमें और कहीं से ला पाएंगे।
0: मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आज तेज वर्षा, आंधी और तेज हवाएं चली जिससे तापमान में गिरावट आई। अगले 2 से 3 दिनों तक असम, मेघालय, आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तराखंड में कल तक तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। जर्मनी के सुहल में आईएसएसएफ जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 रजत और 1 कांस्य पदक सहित कुल 3 पदक अपने नाम किए। 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष जूनियर स्पर्धा में शिवा नरवाल ने रजत और युग प्रताप सिंह राठौर ने 1 कांस्य पदक जीता। 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष जूनियर टीम स्पर्धा में शिवा नरवाल, संदीप बिश्नोई और चिराग शर्मा की तिकड़ी ने रजत पदक जीता। अब भारत के कुल 15 पदक हो गए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात 10:30 बजे ग्रुप के एक मैच में अमेरिका के ह्यूस्टन में पुर्तगाल का सामना उज्बेकिस्तान से होगा। ग्रुप एल में रात 1:30 बजे इंग्लैंड का सामना घाना से होगा। वहीं सुबह 4:30 बजे क्रोएशिया का सामना पनामा से होगा। लंदन में एफआईएच हॉकी प्रो लीग में भारत ने पाकिस्तान को 4-3 के गोल से हरा दिया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सुरक्षा सहयोग मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा जैसी चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नागरिक अलंकरण के 2 समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पुरस्कार पाने वालों में पत्रकार पी नारायणन, पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और आर माधवन तथा गायिका अलका याग्निक शामिल। सरकार ने कहा, अल नीनो के कारण कमजोर मॉनसून के संभावित असर से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां की जा रही हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, this is Akashvani and I'm Saira Mujtaba with the news at 9.

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आपण मैंने कार्यक्रम शुणुछन्ती आकाशवाणी कटक केन्द्ररु।
2: नमस्कार, वर्तमान मुख्य संवाद सह मु सत्य रंजन महापात्र। द्वितीय पर्यायर आज 65 जन पद्म पुरस्कार सम्मानित कले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 2047 विकसित भारत यात्रार नेतृत्व नेबाकु युव भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी आह्वान देले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। माई भारत अभियान अधीन देशव्यापी आयोजित होब वंदे मातरम शिविर, कोलकाताठारे आसंताकालठारु आरंभ होब प्रथम पर्याय शिविर। खरीफ ऋतु और एलिनोर मुकाबला नहीं केन्द्र कृषि मंत्री अध्यक्षतार समीक्षा बैठक अनुष्ठित। तामिलनाडुर तिरुभल्लर ठारे गैस लीक दुर्घटन प्राण हर ओडिया श्रमिकों निकट आत्मीयों सहायता राशि को राज्य सरकार

पिता पुत्र धारिणो वरदो भवा। वैभव बोलते जम जमंकर भग्नी हेले जमुना, जमुनांकर पिता हला सूर्य, वैभव भग्नी पिता पुत्र, सूर्यंकर पुत्र हला कर्ण, कर्ण रोहिणी हला अर्जुन, अर्जुनंकर पत्नी हला सुभद्रा, तस्या भ्राता सुभद्रांकर भ्राता हला श्री कृष्ण, तस्य नारी पिता पुत्र धारिणो वरदो भवा। श्री कृष्णंकर नारी हेले

0: रुक्मणी रूपक लक्ष्मी तस्या पिता लक्ष्मी पिता हेले वरुण तस्या पुत्र वरुण पुत्र हेले चंद्र ये षोड़श भाग कला रु एक मात्र कला अंश को मस्त करे विद्यमान होइथिबा अनंत जो देवाधिदेव मंगलमय शिव से मंगलमय शिव आज मोर देशवासी भाई भौणी मानकर मंगल साधन करंतु बोलानंद एकबार हरि हरि अच्छा लिखिले कवि सम्राट उपेन्द्र भंजन
1: लिखिले पदे
0: बुझो आहे।

0: कथा ये कथा सुनी इंद्रजीत तो कहला हाँ। छाड़ो पछ कथा चिंता करिया लाभ नहीं जहा तो हबार हो जाए वर्तमान मुझे मोर प्रार्थना करुची खंडे अस्त्र आई आते समय दियो ए कनिष्ठता तो पुत्र मु तुम आंजराबद्ध पक्षी पी मु मृत्युवरण करी तुम देखी पार
1: भाग्य
0: किंतु गोटे कथा कर धर्म रचित हो पार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं पूनम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से टेलीफोन पर बातचीत की। कतर के रस लफान औद्योगिक क्षेत्र में हुई दुर्घटना में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर अमीर ने संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए कतर का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की और क्षेत्र में शांति और स्थिरता के प्रयासों का समर्थन किया। साथ ही भारत कतर सहयोग को विभिन्न क्षेत्रों में और मजबूत बनाने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा से लेकर उभरती प्रौद्योगिकियों तक की साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने आज शाम ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों तथा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने, ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को समर्थन करने और एक सुरक्षित, अधिक संरक्षित तथा समावेशी विश्व में योगदान देने का प्रयास करेगी। इस बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार

0: कारों एनएसए की 16वीं बैठक आज नई दिल्ली में हुई। इसमें ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। इस दौरान पारंपरिक सुरक्षा के अलावा ऊर्जा, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला और साइबर सुरक्षा तथा आतंकवादी नेटवर्क द्वारा इस्तेमाल की जा रही नई तकनीकों और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक सम्मान समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक हैं। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण और पूर्व न्यायाधीश के टी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकार एलनीनो के कारण मानसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
1: एलनीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है, और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है, और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
0: श्री चौहान ने कहा कि राज्यों को दलहन, मोटे अनाज और तिलहन जैसी फसलों को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज दावा किया कि ईरान अपने परमाणु केंद्रों की व्यापक निगरानी के लिए सहमत हो गया है। इसके बदले अमेरिका हार्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही पर पाबंदियों में ढील देगा और कड़े नियमों के तहत रोकी गई वित्तीय रियायतें जारी करेगा। सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरानी नेतृत्व ने मौजूदा कूटनीतिक बातचीत के दौरान लचीला रुख अपनाया है। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने परमाणु निगरानी ढांचे के दायरे से को लेकर अमेरिका के दावों को खारिज कर दिया है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने स्पष्ट किया कि ईरान ने अपने विशिष्ट परमाणु केंद्रों की अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसियों द्वारा निगरानी के लिए कोई सहमति नहीं दी है। पुरुष हॉकी में भारत ने एफआईएच प्रो लीग के लंदन चरण के अपने पहले मैच में पाकिस्तान को 4-3 से हरा दिया। भारत की ओर से अभिषेक नैन, नीलकांत शर्मा, सुखजीत सिंह और राजेंद्र सिंह ने गोल किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: कार्यक्रम आकाशवाणी कटक केन्द्रु
3: नमस्कार। आजर अंतिम मुख्य संवाद सह सत्यरंजन महापात्र। द्वितीय पर्यायर आज 65 जन पद्म पुरस्कार सम्मानित कले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। खरीफ ऋतु और एलनीनोर मुकाबला नहीं केन्द्र कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान अध्यक्षत समीक्षा बैठक अनुष्ठित। तमिलनाडुर तिरुवल्लुर गैस लीक दुर्घटन प्राण हरैथिबा ओडिया श्रमिकों निकट आत्मीयों सहायता राशि को राज्य सरकार 4 लाख रु 10 लाख को वृद्धि करछन्ति। इतिमध्यरे ओडिया श्रमिकों मृत्यु संख्या 7 को वृद्धि पाइथिबा सूचना। उपमुख्यमंत्री कनकवर्धन सिंहदेव पूर्तमंत्री पृथ्वीराज हरचंदन अध्यक्षतारे मिलित बैठक अनुष्ठित। रास्ता संप्रसारण और यूटिलिटी स्थानांतर कार्य निर्धारित समय संपन्न करने को निर्देश। ओडिशार मुख्य निर्वाचन अधिकारी आरएस गोपाळन अध्यक्षतारे स्वीकृतिप्राप्त राजनैतिक दलगुडिकर प्रतिनिधि सह गुरुत्वपूर्ण बैठक अनुष्ठित। केही जन भी योग्य मतदाता बाद न पड़ा देले गुरुत्व। मुख्य शासन सचिव अनुगरक अध्यक्षतारे नार्को कोऑर्डिनेशन सेन्टर सप्तम बैठक अनुष्ठित। माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा परिचालित ओडिया शिक्षक योग्यता परीक्षा ओटीईटी आसंता मास 5 तारीख अनुष्ठित। विश्वप्रसिद्ध पुरी रथयात्रा सुपरिचालना पर आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन अध्यक्षतारे द्वितीय समन्वय बैठक अनुष्ठित। भुवनेश्वर कलिंग स्टेडियम आसंता जून 24-28 तारीख पर्यंत अनुष्ठित 65वां जातीय आंतः राज्य सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 एवं राज्य समस्त जिला स्पर्श कला दक्षिण पश्चिम मौसुमी ଆସନ୍ତା ସାତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ

0: आकाशवाणी कटक आमर स्वास्थ्य शुणु उच्च रक्तचाप और मस्तिष्क घात आलोचना कर डॉक्टर सुधांशु शेखर मिश्र।
1: आम शरीर मध्य रक्त एक आबद्ध प्रणाली मध्य प्रवाहित हुए। हृत्पिंड संकोचन जो धमनी मध्य रक्त शरीर प्रत्येक कोण अनुकोण को प्रवाहित होता है। प्रवाह धमनी पार्श्वबेष्टनी एक चाप प्रयोग करथाय। धमनी पार्श्वबेष्टनी नमनीयता वयस बढ़िबा संगे संगे क्रमशः ह्रास पाए, तेणु रक्तर चाप मध्य सही अनुपात वृद्धि पाए। केतेक चर्बीजातीय पदार्थ रक्तनाळीर भीतर पाखरे जमी जिबारु रक्तनाळीर गोलेई संकुचित होइथाय। एही सबु कारणरु रक्तचाप बढ़ि जाए। मस्तिष्क मध्यरे थिबा अति सूक्ष्म धमनी सबु अधिक चाप सही नपारी फाटी जाती। मस्तिष्कर स्नायुतंत्री मध्यरे रक्तक्षरण हुए एवं एहा पार्श्वस्थ स्नायुकोशगुडीकु चिपी दिए। जदि रक्तक्षरण अधिक हुए एहा एक पार्श्वर मस्तिष्क को विपरीत पार्श्वकु ठेली दिए, जहाँफल मृत्यु घटिपे। अनेक समय रक्त मस्तिष्क प्रकोष्ठ मध्यरे थिबा मस्तिष्क सुषुम्ना रसरे मिसि जाए, फलरे एहा मस्तिष्क सुषुम्ना रसर प्रवाह एवं सम्मिश्रण रे व्याघात सृष्टि करे। फळरे एहा जमी रही मस्तिष्क मध्यरे अधिक चाप सृष्टि करे एवं रोगीर आरोग्य लाभ रे बाधा सृष्टि करे। मस्तिष्क मध्यरे क्षरित रक्त क्रमश संकुचित हुए। केतेक बृहदाकाय कोष क्षरित रक्तर अंशगुडीकु क्रमे क्रमे भक्षण करी सेही स्थानरु अपसारण करिथांती। प्राय 4 रु 6 मास मध्यरे एहा पूर्वावस्थार निकटतर हुए। मस्तिष्क मध्यरे रक्तस्रावर परिमाण ओ स्थान उपरे रोगर लक्षण एवं अग्रगति निर्भर करे। अर्धाधिक स्थल पुटामेन एवं निकटवर्ती इंटरनल कैप्सूल रक्तक्षरण हुए। टेम्पोराल पैराइटल एवं फ्रंटल लोब्र श्वेत स्तर में थालामस पन्स अनुमस्तिष्क रक्तस्राव हो पारे। मोटा अतिपुष्ट एवं उच्च रक्तचाप विशिष्ट जन पुरुष व्यक्ति हठात अचेत हो गले मस्तिष्क रक्तस्राव बोली संदेह कराए। बेले बेले रक्तक्षरण धीरे धीरे हेले रोगर लक्षण देखादेवाक प्राय 24 घंटा लग जाए। मस्तिष्क सुप्त अंचल छोट छोट रक्तस्राव हेले जना न पड़पे। उच्च रक्तचाप जनित मस्तिष्क रक्तस्राव कृष्णकाय मानक अधिक देखाए। यह साधारणतः व्यक्तिर जाग्रत अवस्था हुए। उच्च रक्तचाप जेकोसी कारण होपे, जथा किडनी रोग, अंतस्रावी ग्रंथी मानक असंतुलित क्षरण, गर्भजनित विषक्रिया अथवा भीषण उत्तेजना। रक्तक्षरण अधिक हेले व्यक्ति अचेत हो जाए, शरीर अर्धेक अचल हो जाए एवं देखु देखु यह बढ़िवारे लगे। अन्य केतक रोगी केवल मुंड व्यथा बा मुंड भितर एक असाधारण अनुभूति हेबार कहती। किछि मिनिट मध्यरे मुह बंका हो जाए, कथा कहिबा बाधाप्राप्त हुए, गोड़ और हाथ दुर्बल हो जाए, आखि दुईटी विपरीत दिगक बुली जाए। क्रमे क्रमे रोगीटी अचेतन अवस्था आड़क जाए। निश्वास प्रश्वास अनियमितता देखाए और रोगीटी विचलित हुए। से क्षेत्र में मुंड व्यथा न हो केवल हाथ बा गोड़ दुर्बल हो पारे। रक्तचाप जनित मस्तिष्क रक्तस्राव में मुंड व्यथा और बांति प्राय होता है। केवल शतकड़ा 10 भाग क्षेत्र में बात मारिपे। अंटारे छुंची फोड़ी मस्तिष्क सुषुम्ना रस संग्रह करी ताहार परीक्षा कले मस्तिष्क रक्तस्राव होता जमापड़े। तुरंत चिकित्सा द्वारा रोगीर जीवन रक्षा संभव। रक्तचापर नियंत्रण, श्वासक्रिया, हृदयंत्र तथा मस्तिष्क मध्यस्थ चापर संतुलन यही रोग।

0: तरह से ज्यादा नए व्यापारों को एक तरह से प्रोत्साहन मिला है सरकार की ओर से, जो रिफ्लेक्ट होता है स्टार्टअप्स। अगर हम देखें 350 स्टार्टअप्स थे 2014 में और अब 2,20,000 स्टार्टअप्स हैं हमारे देश में। सो एक स्टेटिस्टिक जस्ट इट्स रिप्रेजेंटेटिव कि किस तरह से ग्रोथ हुआ है। सो आप कैसे देखते हैं 12 वर्षों को, बिजनेस एनवायरमेंट जो इम्प्रूव हुआ है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, और क्या लगता है आपको सरकार के कौन से एफर्ट्स, अगर आप टॉप टू हमें बताएं, इस दिशा में जो रिफॉर्म्स परिवर्तनकारी रही हैं?
1: जी बिल्कुल, सोनू जी आपने सही बताया कि जो रिफॉर्म्स हुई हैं जो पिछले 12 वर्षों में, जिन्होंने एक बहुत मेजर ब्रेक थ्रू दी है हमारे इकोनॉमी को, हमारे मैन्युफैक्चरिंग को और हमारे ओवरऑल जो देश का जो जीडीपी है उसको आगे बूस्ट अप किया है। तो सरकार का जो पहल था जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ, मेक इन इंडिया से, क्योंकि मेक इन इंडिया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बिना कुछ भी नहीं था। तो सरकार ने मेक इन इंडिया को अनाउंस करते ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स के ऊपर जोर दिया, बहुत बल दिया, जिससे कि हम बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर पाए। अगर हम देखें कि 2014 में जो हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का रैंक था वो 143 था, वर्ल्ड बैंक का एक इंडेक्स आता था उस टाइम पे, तो जिसमें हम 143 थे, बहुत नीचे थे, मतलब लगभग जो जितनी भी इकोनॉमीज हैं, जो भी इमर्जिंग मार्केट्स हैं या फिर एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं, इवन के डेवलपिंग इकोनॉमीज भी हमारे से काफी ऊपर थी। तो उसके बाद सरकार ने इसके ऊपर पूरा जोर दिया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रिफॉर्म्स के ऊपर जोर दिया, तो हम धीरे धीरे करके 2020 तक जो थे 63 तक आ गए थे हम अपना रैंकिंग, जो था सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव करते हुए 63 पे आए। उसके बाद वर्ल्ड बैंक ने अपना इंडेक्स बंद कर दिया, मे बी बिकॉज ऑफ सम रीजन्स। उसके बाद जो स्टेट्स ने, उन्होंने अपना ब्रैप रिफॉर्म्स चालू किए, बिजनेस रिफॉर्म्स असेसमेंट प्लान जो था, उसके बाद उसमें बहुत तेज गति से काम हुआ, स्टेट्स में एक बहुत हेल्दी कंपटीशन हुआ, जिसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो एक पैशन बन गया, जो लोगों में, बिजनेसेस में, सरकार में, उसमें ज्यादा से ज्यादा रिफॉर्म्स हो, उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा तवज्जो होनी शुरू हो गई, जो उसके पिलर्स हैं, खास करके जो एक हम बात करते हैं कि फेसलेस, पेपरलेस और फिर लेसर प्रोसीजर्स एंड लेसर कंप्लाइंसेस, ये चार जो पिलर्स हैं, इन्होंने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को आगे एक बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू दी है, जिसे हम आज अगर हम देखते हैं हमारे स्टार्टअप्स, जो आपने बात की कि लगभग कोई 360 स्टार्टअप्स थे, उसके बाद अभी 2,20,000 हैं। अगर हम देखें कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी हमारा लास्ट ईयर का, अगर हम उसका ग्रोथ रेट देखें तो मैन्युफैक्चरिंग ग्रू मोर देन 10%। सो डबल डिजिट ग्रोथ इज कमिंग इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो ये सब चीजें जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की वजह से ही हो पाई, जिससे कि हमारा जो इन्वेस्टर है, जो ग्लोबल इन्वेस्टर है, बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हुआ, और जो एफडीआई आना शुरू हुआ, जो 2019-20 के बाद एक एफडीआई को ब्रेक थ्रू मिली, और अभी हम 1 ट्रिलियन से भी ज्यादा क्यूमुलेटिव एफडीआई अट्रैक्ट कर चुके हैं हमारे देश में। 1 ट्रिलियन से ज्यादा का एफडीआई का एक क्यूमुलेटिव जो भंडार है वो हो चुका है, और अभी लास्ट ईयर ही हमारा एफडीआई $95 बिलियन था, तो लगभग हम, मेरे ख्याल से इसी वर्ष में हम $100 बिलियन का एक एफडीआई डेस्टिनेशन बनने जा रहे हैं। सो दिस इज द ट्रैजेक्टरी ऑफ अवर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विच हैज सपोर्टेड द मैन्युफैक्चरिंग, अवर एफडीआई एंड अवर वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज टू मूव फॉरवर्ड एंड टू बिकम मोर एंड मोर रेजिलियंट इन द ग्लोबल इकोनॉमी।
0: Absolutely. So, Mr. Chinoy, Dr. Sharma has extensively explained that how the ease of doing business has become the mantra for the push that has come to the manufacturing sector, to the Make in India initiative of the government and the GDP growth. Would you say that the government's focus has gradually shifted from a compliance-heavy system to a facilitation-driven ecosystem? How do you see this basic mindset change, or you can say paradigm shift, in how the government is taking a collaborative and inclusive approach?
2: If you look at the whole ecosystem, right, earlier business was always viewed with suspicion.
0: Yes.
2: You were always seen as being a tax evader, not filing returns, you know, always evading and finding ways to circumvent the law, whatever it is.
0: Mm-hmm.
2: A very significant change has happened in this last 12 years, that business has been recognized. I think for the first time, the Prime Minister actually talked about businesses being responsible and contributors to the economic growth in his Independence Day speech. It's never happened before. The second thing, which is very important to actually understand in this whole context, was that there were a whole set of small things, like if you didn't file certain data under certain law, or if you did not submit a return by a certain time, it was imprisonment. So all that has gone away. A lot of that has gone away. Some things still remain. You've had two versions of the Jan Vishwas Bill, 1.0 and 2.0. So you've actually looked at this. The third thing which is there is

0: supporting the ease of doing business, particularly the new and young entrepreneurs to come into the system.
1: Yes.
0: Now, when I go to some classes or the MBA classes for some guest lectures, then the students talk about the entrepreneurship.
1: Mm.
0: They want to know about the opportunities existing in the promising areas of the economy.
1: Yes.
0: Now, the entrepreneurship is in their mind. They want to move forward to become entrepreneur to provide the jobs to the other people. So, this is the reflection of overall ease of doing business during the last 12 years with the many reforms starting from Make in India to the recent reform of Bhavya scheme. Like the government has provided industrial park scheme. You can develop your manufacturing plant in a single go, in a single space to move forward. And that is a great example of ease of doing business.
1: Yes.
0: Like the single window system was providing the procedural breakthrough. Now this Bhavya scheme is providing the setup of business at a single space. So all these developments are supporting the economy, supporting the businesses and supporting the employment to happen for the growing young population in the country. So I'll give you some more example. Like earlier I discussed the FDI inflows in India.
1: Mm.
0: Now the free trade agreements. These free trade agreements are becoming a major breakthrough for the Indian economy in the global economic system. We have already signed 8 free trade agreements. 9th is in process since the last 6-7 years. And these free trade agreements will become more fruitful with more and more ease of doing business.
1: Yes.
0: So as already we have undertaken many reforms for the ease of doing business, so this is the right time to move forward to become more and more strong in the global economic system with the free trade agreements with the promising economies. So this is the support of ease of doing business that the government is able to sign free trade agreements with the many competitive economies in the advanced economies.
1: Yes.
0: Like 38 economies are advanced economies in the all free trade agreement which we have signed during the last 6-7 years.
1: Absolutely.
0: With a great confidence.
1: Yes.
0: That yes, we have a strong ease of doing business. We can compete with them in the global market or even in the domestic market, as ease of doing business has created a great level playing field in the economy. So going forward, I believe now we are very much capable to move forward and to become a great player in the global economy, to compete with many countries. Like Shunai mentioned that our PMI is now at the top of the competitive economies.
1: Absolutely.
0: Our PMI is higher than any economy in the top 10 economies. Like our services PMI, our manufacturing PMI, even despite the such kind of headwinds at the global level, our PMI is more and more resilient in the global economic
1: Absolutely.
0: System.
1: So, Mr. Chinoy, जैसा कि अभी डॉक्टर शर्मा ने कहा कि हम और आपने भी कहा कि इतने हम आपदाओं से गुजरे, इतनी मुश्किल सिचुएशंस जो इंटरनेशनल लेवल पर हुई, चाहे वो पैंडेमिक हो, चाहे ये जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हो, बट फिर भी हमारे आर्थिक मजबूती बनी रही है. मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो सरकार के फ्लैगशिप स्कीम्स रही हैं, जैसे स्टार्टअप इंडिया या पीएम मुद्रा योजना, जिसमें आपको एक बिजनेस शुरू करने के लिए कोलैटरल फ्री बहुत कम इंटरेस्ट पे लोन दिया जाता है, या जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन सिस्टम बनाया गया था सरकार द्वारा, इनको आप कितना कहें कि क्रांतिकारी मानते हैं, जिन्होंने सबको, जिनकी भी ड्रीम थी एक व्यापार शुरू करने की, उसे पूरा करने का एक मौका दिया.
2: तो सूरज जी, अगर आप देखें तो अगर एक बिजनेस शुरू करने के लिए, और आपने एसपी शर्मा से ये पूछा था कि क्या बदला है, ठीक है, तो पहला जो चीज बदला, जैसे उन्होंने समझाया कि आप घर बैठे बैठे, और आपने पूछा ऑनलाइन का, आप घर बैठे बैठे अपना बिजनेस रजिस्टर कर सकते हैं, आप बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, आप पेमेंट्स रिसीव कर सकते हैं और आप टैक्सेस भर सकते हैं. तो आपका जो समय बर्बाद होता था लाइनों में खड़े हुए और ये इंटरेक्ट करने के लिए, अब वो एक बहुत कम सा हो गया है. अगर आप देखें जो स्कीम्स जिसकी आपने बात की थी, तो ये स्कीम्स जो आपने इस 3 स्कीम्स की बात की थी ना, ये एक पर्टिकुलर वर्ग के लिए है. जो आप देखें तो जो मुद्रा स्कीम है वो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए और उनके लिए जो छोटे छोटे अमाउंट्स जो बैंक्स में एक बहुत अविश्वसनीय होती थी, क्योंकि बैंक के लेंडिंग पोर्टफोलियो में जिसकी उनको कॉस्ट पड़ती थी उस लोन को देने के लिए, वो उनका इंटरेस्ट कवर नहीं करता था. तो गवर्नमेंट ने जब ये स्कीम एक तरीके से लागू किया, और इनमें ना मुद्रा स्कीम तो एक ही उस वर्ग के लिए, ठीक है, अलग अलग स्कीम जो है, स्ट्रीट वेंडर्स के लोन की स्कीम है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए स्कीम है, तो इस रिफॉर्म की एक खासियत है कि उन्होंने, और किसान क्रेडिट कार्ड उसको मत भूलिएगा, उन्होंने पूरे जो इकोनॉमी में जो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटा है, लोएस्ट लेवल से लेकर

0: ये हाईएस्ट बिजनेसमैन एंड एफडीआई के लिए हर कदम पे उनको क्या दिक्कत आ रही है, उनकी क्या जरूरत है, उसके लिए एक स्कीम लॉन्च किया है, पीएम विश्वकर्मा स्कीम, जिसको कारीगर को एक लोन मिलता है अपने टूल्स को करने के लिए और एक उनको स्किलिंग करते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जनधन योजना और जो आधार और मोबाइल का जो ट्रिनिटी है, उन्होंने ग्रास रूट लेवल में लोगों की जिंदगी बदल दी है। और साथ में क्योंकि वो छोटे छोटे अमाउंट्स जो जनधन योजना में आए थे और जो करोड़ों अकाउंट्स खोले गए थे, अगर उसकी आप पूंजी जोड़िए तो वो सारा जो पूंजी है इंडियन इकोनॉमी को बढ़ाने के काम आई है। वो पहले तो एक अपने घर में रखी रहती थी, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी सपोर्ट नहीं करती थी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आज के जमाने में 2012-13 में आप पूछें कि आप अपने बेटे को क्या बनाएंगे, तो लोग कहते थे इंजीनियर, डॉक्टर यार। और मोबाइल का जो ट्रिनिटी है, उन्होंने ग्रास रूट लेवल में लोगों की जिंदगी बदल दी है। और साथ में क्योंकि वो छोटे छोटे अमाउंट्स जो जनधन योजना में आए थे और जो करोड़ों अकाउंट्स खोले गए थे, अगर उसकी आप पूंजी जोड़िए तो वो सारा जो पूंजी है इंडियन इकोनॉमी को बढ़ाने के काम आई है। वो पहले तो एक अपने घर में रखी रहती थी, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी सपोर्ट नहीं करती थी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आज के जमाने में 2012-13 में आप पूछे कि आप अपने बेटे को क्या बनाएंगे, तो लोग कहते थे इंजीनियर, डॉक्टर या चार्टर्ड अकाउंटेंट।
1: जी
0: ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप का नाम ही नहीं आता था।
1: जी
0: और अगर किसी को कहते कि आप बिजनेस शुरू करें तो माँ बाप कहते कि नहीं बेटा, बेटी आप मत जाओ इसमें, आप एक नौकरी करो।
1: हाँ।
0: एक माइंडसेट चेंज हो गया है देश भर में, गांव गांव में। और अब एक एंटरप्रेन्योर बनने में बहुत ही इज्जत है और देश के लिए बहुत जरूरी है। और दूसरी जो उसके साथ में आया है, और आपको ये आंकड़ों से नहीं पता होगा, लेकिन अगर आप देखें तो अगर आप बिजनेस में फेल करते हो कि आपकी बिजनेस चले नहीं, तो पहले ही एक बहुत ही बुरी नजरिए से देखा जाता था। आप कहते हैं नहीं बेटा, आप इस फेलियर से सीखो और दूसरा बिजनेस शुरू करो।
1: बिल्कुल।
0: और ये एक खास, पहले ये रिफॉर्म्स होने से पहले ये एक बहुत खास डिफरेंस था भारत में और अलग अलग इकोनॉमीज में। अब इंडिया में भी वो एक तरीके से आ गया। और जो ग्लोबल स्तर पे अभी आप देखें तो मेडिकल डिवाइसेस में, ड्रोन्स में, कई कई सेक्टर्स है, स्पेस में यंग स्टार्टअप्स जो है, इस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस स्पेस में देखे तो इसरो से कम्पीट कर रहे हैं, डिफेंस में डीआरडीओ से कम्पीट कर रहे हैं, मेडिकल में मेडिकल लेबोरेटरीज के।
1: और कम्पीट की जगह शायद हम कह सकते हैं कि कोलैबोरेशन का एक सरकार का भी है कि उन्होंने सारे सेक्टर्स खोले हैं और वेलकम किया है।
0: बिल्कुल, आपने इमरजेंसी लोन फैसिलिटी किया था, लेकिन आप वो देखें, वो आत्मनिर्भर भारत का कोविड के अंतर्द्वान एक स्कीम था, जो कोविड में गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, एनजीओ और सिटीजन ने जो कोलैबोरेट किया था। देखिए, कोविड के पहले तो हम ना पीपीई किट्स बनाते थे, ना वैक्सीन बनाते थे, ना वेंटिलेटर बनाते थे। पूरे गवर्नमेंट इंडस्ट्री कोलैबोरेशन के साथ हमने वैक्सीन यूज की, अपनी ओन वैक्सीन। ठीक है, पीपीई किट्स में हम नंबर वन बन गए थे, वेंटिलेटर्स बनाना शुरू किया था और कई एक तरीके से थे। और जो स्कीम्स आत्मनिर्भर 1, 2, 3, 4 मेरे ख्याल से थे, उसमें जो स्कीम्स दिए थे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट थे इंडिया को स्टेबलाइज करने के लिए। और उसके खास बात के रिफॉर्म्स से अगर आप देखें तो जो हमने परसेंटेज ऑफ जीडीपी उसमें लगाया था वो औरों देशों से बहुत ही कम था, लेकिन फिर भी अनाज 80 करोड़ लोगों को एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड, माइग्रेंट वर्कर्स के लिए, विमेन के लिए, अलग अलग जो मेंबर्स ऑफ सोसाइटी है जो आपके श्रोता सुन रहे होंगे, वो अपने बिल्कुल संबंध करेंगे कि हमारे लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और हमारे लिए एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बहुत कुछ हुआ है जिसका हम फायदा उठा सकते हैं।
1: सो हम मान सकते हैं कि ये ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस है, जैसे आपने जन विश्वास बिल की अभी कुछ समय पहले बात की थी कि काफी सारे डिक्रिमिनलाइज हुए हैं ऑफेंसेज और सजा घटाई गई है ताकि एक जो वो डर का जो माहौल था वो ना हो। एक और जो अभी डॉक्टर शर्मा ने बात करी, बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान ब्रैप जो 2015 में शुरू किया गया, और उसका एक ग्रासरूट्स लेवल की बात कर रहे हैं, ग्रासरूट्स लेवल पर डेवलपमेंट पे जो बल दिया गया है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी ये ब्रैप है, बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान। सो आपको लगता है कि ये भी बहुत जरूरी है भारत जैसे देश में जो इतना विस्तृत है, इतना विविध है और हरेक ज्योग्राफी की अपनी कोई प्रोडक्ट है या अपना कोई ऐसा एक यूनिक प्रोपोजिशन है जो मोनेटाइज किया जा सकता है?
0: बिल्कुल सही कहा आपने सुनो जी। और उसमें आप देखें तो एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है और एक कम्पेटिटिव फेडरलिज्म है। पिछले 12 सालों में आपने दोनों देखे। तो मैं आपको एक दूसरी ओर ले जाता हूं जो हमारे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, हम उन्हें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स कहते हैं। उसमें क्या किया, उसमें एक डैशबोर्ड बनाया कि भाई ये आपके इंडिकेटर, उसमें बिजनेस का भी इंडिकेटर है और एक साल में सबसे ज्यादा कौन तरक्की कर रहा है उसको एक अवार्ड दे रहे थे। तो वहां के जो कलेक्टर्स हैं और वहां ग्रास रूट लेवल पे आप देखें तो वो डैशबोर्ड को देखते थे और कहां कोई अच्छा कर रहा है उसको एक लेकर के अपने डिस्ट्रिक्ट में इम्प्लीमेंट करने का देखते थे और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट एक्चुअली उससे सीख सकते थे। अब क्या हुआ है कि ऑल्दो ये वर्ल्ड बैंक ने अपना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स बंद कर दिया है, बट इंटरनली भारत में कंपेरेटिव करते हैं स्टेट्स में कौन क्या कैसे रिफॉर्म कर रहा है
1: जी,
0: उसको कंटिन्यू हो रहा है। तीसरी जो चीज है, कई स्कीम्स बजट में आए हैं, चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, चाहे आप इन्वायरमेंट पे देखें या

0: कई स्कीम्स हैं जिसमें अगर स्टेट रिफॉर्म करेगा और स्टेट कुछ करेगा उसके साथ ही आपको सेंटर से फाइनेंसिंग मिलेगा। 2014 के बाद हर स्टेट में एक इन्वेस्टमेंट समिट हो रहा है, हर स्टेट ये प्रेजेंट करना है उन्हें क्या रिफॉर्म किए हैं, इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किए हैं, और इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप्स का होता है और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कैटलिस्ट हो गया है कि रिफॉर्म करने का।
1: और ये धुरी यही है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमारे यहाँ बहुत बढ़ी है। डॉक्टर शर्मा, अगर आपके पास आए तो मार्केट एक्सेस पर भी बहुत जो रिफॉर्म्स हुए हैं टेक्नोलॉजी ड्रिवन, ऑफकोर्स टेक्नोलॉजी हैज बीन अ बिग एनेबलर इन दीज 12 इयर्स क्योंकि उसको बहुत तेजी से अडॉप्ट किया गया है। जो अपॉर्चुनिटीज गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस द्वारा लाई गई या जो ONDC है, वन नेशन डिजिटल एंड लॉजिस्टिकल रिफॉर्म्स जो हुई है लॉजिस्टिक्स में, उनको आप कितना इम्पोर्टेंट मानते हैं MSMEs के लिए, स्मॉल बिजनेसेस के लिए, अपना जो भी प्रोडक्ट है या सर्विस है उसको पहुंचाने के लिए मार्केट तक?
2: जी बिल्कुल सोनू जी, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स के साथ साथ सरकार ने नई पॉलिसीज भी दी है, जैसे कि आपने गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की बात की है, उसमें बायर्स और सेलर्स, जो आपका कोई प्रोडक्ट है तो आप उसको कैसे आगे सेल कर सकते हैं, गवर्नमेंट उसकी बायर कैसे बन सकती है। और ONDC प्रोवाइड करता है कि जो ई कॉमर्स है आपका उसमें बायर्स एंड सेलर्स मिलकर आपस में कैसे अपने जो बिजनेस है उसको आगे ब्रेक थ्रू दे सकते हैं, कैसे उसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स क्या है जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के आपको बायर जो है इधर उधर खोजने का जरूरत नहीं है, आप एक प्लेटफॉर्म पे अपना जो प्रोडक्ट है उसको डिस्प्ले कर सकते हैं, उसको आप बता सकते हैं, तो फिर बायर आपको अपने आप ही मिलेगा। तो जैसे आपने रिफॉर्म्स की बात की, लॉजिस्टिक्स पॉलिसी सरकार लेके आई जिसमें लॉजिस्टिक कॉस्ट होता था 14% ऑफ GDP होता था, और इस पॉलिसी के साथ साथ जो रिफॉर्म्स हुई, जो सरकार ने ट्रांसपोर्ट सिस्टम में रिफॉर्म्स की, जो रेल कनेक्टिविटी में जो रिफॉर्म्स की, जो एयर कनेक्टिविटी में रिफॉर्म्स की, और जो वाटरवेज में जो रिफॉर्म्स की, तो उनके मद्देनजर जो अब हमारा लॉजिस्टिक कॉस्ट है दैट इज नाउ 9-10% ऑफ GDP, तो उसमें बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट हुई है पिछले 6-7 वर्षों में। और साथ साथ में जो मैं बताना चाहूंगा कि PLI स्कीम, जो एक ऐसी स्कीम है जो आपका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करती है, सरकार ने ऐसे 14 सेक्टर्स चूज किए जो कि बहुत ही प्रॉमिसिंग सेक्टर्स हैं, जहां पे सरकार ने इंसेंटिव बेस्ड उनको स्कीम में आने को बोला, जिसमें कि आप देखेंगे कि उस स्कीम के मद्देनजर हमारा जो एक्सपोर्ट है बहुत इंक्रीज हुआ है। नाउ वी आर मेकिंग न्यू एंड न्यू रिकॉर्ड्स इन आवर एक्सपोर्ट ट्रैजेक्टरी। हमारा जो एक्सपोर्ट है पिछले 6-7 वर्षों में हरेक साल नया कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। इवन के पिछले साल भी जब ये हेडविंड्स थे, जब टैरिफ हेडविंड्स भी थे, जब आपका ये जियोपॉलिटिक्स भी चरम सीमा पे चला गया, तब भी हमारा जो एक्सपोर्ट है उसने नया कीर्तिमान $863 बिलियन का स्थापित किया, जिसमें सर्विसेज और मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स दोनों है। और जैसे चिनाई साहब ने भी बात की कि ग्रोथ ट्रैजेक्टरी, अगर हम पीछे 2020 के बाद कोरोना पीरियड के बाद का अगर हम अपना ग्रोथ रेट देखते हैं, दैट इज मोर देन 7% ऑन एन एवरेज। इमीडिएट कोरोना के बाद हम 9.7% पे ग्रो किए, उसके बाद मोर देन 8% पे ग्रो किए, उसके बाद हम 7.3 पे ग्रो, अभी जो टोटल अगर हम देखेंगे दैट इज मोर देन 7% इन अ रो, तो एक बहुत बड़ी चीज है। जबकि ग्लोबल ग्रोथ जो है वो 6% से गिर के अभी जो लेटेस्ट वर्ल्ड बैंक का एस्टिमेट है वो लगभग कोई 2.7% रहेगी या 2.6% रहेगी। तो कितना ग्लोबल ग्रोथ में कितनी डिसेलरेशन हुई, लेकिन इंडिया का ग्रोथ रेट जो है इंटैक्ट रहा। अभी भी जो वर्ल्ड बैंक के एस्टिमेट्स हैं वो 6.6% पे, हमारा RBI का एस्टिमेट 6.5% पे, और हमारे जो इंडस्ट्री बॉडीज हैं दे आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक एट अराउंड 7%। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अवर ग्रोथ ट्रैजेक्टरी, अवर एक्सपोर्ट्स, अवर रिफॉर्म्स प्रोसेस एंड अवर रिफॉर्म्स फॉर दीज ऑफ डूइंग बिजनेस गो हैंड इन हैंड। ये चारों चीजें मिलके एक बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू जो है हमारी इकोनॉमी को दे रहे हैं। हमारे आगे लक्ष्य है, जैसे हम बात करते हैं कि हम विकसित भारत बनेंगे 2047 तक, वो एक बहुत ही राइट डायरेक्शन में हमारी जो ग्रोथ हो रही है। जैसे 2030 का हमारे अनुमान है कि हमारा एक्सपोर्ट है जो हम $2 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट देखना चाहते हैं, जिसमें मर्चेंडाइज 1 ट्रिलियन होगा, सर्विसेज 1 ट्रिलियन होगा, और हमारी जो इकोनॉमी है वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी, और जो हमारा GDP का साइज ऑफ GDP दैट विल ऑल्सो क्रॉस 5 ट्रिलियन। तो कुल मिला के जो स्टेटिस्टिक्स है और जो रिफॉर्म्स है और जो क्वालिटेटिव जो डेवलपमेंट्स हैं, जैसे मैंने बताया कि अभी सरकार ने एक भव्य स्कीम अनाउंस की है, उसके पहले सरकार ने जो इंसेंटिव्स दिए एक्सपोर्ट एक्सपोर्टर्स को के मद्देनजर के जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको भी सपोर्ट करना चाहिए। भले ही हम डायरेक्ट तौर पर इंसेंटिव नहीं दे सकते, फिर भी हम फैसिलिटेट कर सकते हैं कि उनको जो ये वेस्ट एशिया क्राइसिस है उसका जो इम्पैक्ट है कैसे मिटिगेट किया जा सकता है। तो इन सब चीजों में सरकार बहुत तेज गति से आगे रिफॉर्म्स कर रही है। और जैसे चिनॉय साहब ने एक इमरजेंसी क्रेडिट लाइन की बात की
1: जी,
2: जो सरकार ने कोरोना के टाइम पे अनाउंस की थी, वो बहुत सक्सेसफुल।

0: inclusivity. If we see the Mudra scheme, you know, the women are, I being a lady, you know, I feel that, I mean, there's a lot of stress that has been given on developing women as business entrepreneurs, and a lot of encouragement has been given to new entrepreneurs. So you feel that this is a era where anybody who has the talent has now the opportunity, has been enabled to become a part of nation building?
1: I think absolutely. If there are any listeners who want to start a business, women or men, there are a lot of specific projects. And, you know, if you look at the year before last budget, right, one of the things was 75% women in economic activity. You know, that's his goal of what does Viksit Bharat mean, right?
0: Yes.
1: And we want to become entrepreneurial. So this is the best time for any young person or even a person
0: of
1: who is
0: any age,
1: age group
0: yes,
1: to actually explore setting up a business. The domestic ecosystem to promote entrepreneurship has never been better. Some people may say some more changes are going to have required, but this is always work in progress. And the interesting part of this whole system is that the government is willing to listen to what changes need to be made. If you give a suggestion, it is looked at, maybe accepted. But the whole idea here is ease of doing business and ease of living.
0: Absolutely. In fact, we are totally running out of time. Would you like to say something, Dr. Sharma?
2: Yes, Sonuji, I would like to mention one more promising area, which is the artificial intelligence, which is promoting and supporting the business's trajectory and making them more and more easier. अगर आप देखें तो जो हम पहले बहुत बैकवर्ड माने जाते थे कि हम टेक्नोलॉजी अडॉप्शन में अभी हम सबसे आगे हैं.
0: Yes.
2: हमारी जो ग्रोथ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अडॉप्शन में दैट इज सिग्निफिकेंटली फास्टर देन एनी एडवांस्ड इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम.
0: तो ये एक ब्रेक थ्रू
2: यस जो सरकार का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन जो है जो सरकार ने लगभग कोई 10,000 करोड़ के फंड से शुरू किया तो आज वो बहुत तेज गति से आगे बढ़ा हुआ है. अब कंपनीज नाउ आर कमिंग फॉरवर्ड टू अडॉप्ट मोर एंड मोर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड टू बिकम मोर एंड मोर प्रोडक्टिव एंड कम्पेटिटिव इन दी नॉट ओनली इन दी डोमेस्टिक इकोनॉमी बट एट दी ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम.
0: डॉक्टर शर्मा, मिस्टर चनोय, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग.
2: थैंक यू.
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे व्यापार में सुगमता, सुधारों से सशक्त होती अर्थव्यवस्था पर परिचर्चा. इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक दिलीप चिनॉय और डॉक्टर एसवी शर्मा. परिचर्चा का संचालन कर रही थी सोनू सूद. यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया. इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं.
4: आकाशवाणी दिल्ली रु प्रचारित एवं आम केन्द्र रे रेकर्डिंग जोगे गृहीत केन्द्र सरकार 12 वर्ष पूर्ति अवसर रे सुनिले विशेष कार्यक्रम. श्रोता बंधु माने कार्यक्रम सुनिछंती आकाशवाणी कटक केन्द्र रु. आमर परवर्ती कार्यक्रम गीत गीतिका.
5: अपा देखो
6: हैप्पी बर्थडे भाई.
5: देखा वाह मोर फेवरेट कलर
6: सबु बेले शॉपिंग.
5: आई नो मा खर्चो करिबारो वयस एटा राइट
7: सेविंग करिबारो भी वयस एटा.
8: आई नो बापा सेव कर उचित जगह रे निवेश कर मूलधन ऊपर सुध मिलिबो जहाकु पूर्णी थरे विनियोग करले सुध मिलि चालिथिबो.
5: आई नो ना
8: आरबीआई कहे
9: कर सटीक आरंभ हुओ फाइनेंशियली स्मार्ट.
4: गीत गीतिकार संगीतमय परिसर को आपण मानको सादर स्वागत. बंधु कथारे अछि विश्वास मिलई हरि तर्के बहु दूर. विश्वास एमिति एक गुण जहा फळरे मनीष मनीष भितरे देवतुल्य संपर्क गढ़ी उठे. जणकु प्रतिश्रुति दे विश्वास जन्मई प्रतिश्रुति भंग करिबा बा विश्वास हरैबा परे मन हुए. तेणु सबुबेले अन्यर विश्वास जितंतु एवं निजको जणे उत्तम नागरिक भावे समाजरे प्रतिष्ठित करंतु.

0: महामंत्री नोहे खाली हस्तिनार राजा पितामही अंतरम आकुलित शुणिबाकु पितृ संबोधन किंतु किंतु केते भाग्यहीन मुहि सप्तपुत्र हेले जन्म सत्य जाह्नवी गर्भरु किंतु बिना दोषे निसंकोचे सत्यजात शिशुरे मोदेले गंगा विसर्जन जाह्नवीर अतल गर्भरे बुकी धरी सर्प ज्वाला असह्य यंत्रणा करी नाही प्रतिवाद प्रिय जाह्नवीरे जेणुथिला शपथ मोहर
1: महाराज
0: करिथिले पितृ सत्य रक्षा कहीं से अतीत किंतु आज संजीवित तार प्रतिटी मुहूर्त मानस पटरे

0: महामंत्री
1: महाराज
0: समस्त कुशल तो महामंत्री
1: हस्तिनार महाभाग्य सत्यनिष्ठ दक्ष प्रजानुरंजक शासक आपण दीर्घ वर्ष परे देश मातृका आदि होईचि सुजला सुफला शस्य श्यामला सत्यवा लक्ष्मी सुप्रसन्ना हस्तिना कटके आपणंक जय जयकारे प्रकम्पित ए मेदिनी अद्भुत संजोग देव हस्तिनार सिंहासने जेबे हेले अधिष्ठित शत्रुगोष्ठी देले छत्रभंग शांति स्वस्ति खेलिला थरारे मित्र हस्त प्रसरिला देश देशांतरु आपणंक स्तुति गाने कंपिला अवनी ए महाभाग्य महाभाग्य हस्तिनार ए महाभाग्य मने हुए हस्तिनार महाकाशे उदय आदि दिवाकर सहस्य ज्योति विस्तारी आपणंकर जय हेउ महाराज आपणंकर जय हेउ
0: ना ना महामंत्री ए महाभाग्य प्राप्ति नुहे शांतनुर सत्यनिष्ठा अछि आपणंक एहार प्राप्ति रे प्रजांक देशानुभक्ति मातृपूजा एहार प्राप्तिरे अछि आशीर्वाद पितृपुरुषंक सर्वोपरि विधातांक आशीर्वादे प्लावित ए हस्तिना कटक किन्तु किन्तु कि भाग्यहीन मुहि जहांक करुणाधारा रक्त होई बहे मोर धम

0: सुनिलतम मंत्री होई आत्मविस्मृतम जाह्नवी सर्त को करी ग्रहण चार प्रतिफल फोगुअ आज असह्य जंत्रणा मर्मंतुद वेदन हृदय मोर प्रपीड़ित पारुना निजक मु प्रकृतिस्थ करी वर्ष पर वर्ष गंगा गर्भर जन्म ने सुकुमार सात गोटी शिशु पुत्र किंतु हतभाग्य मुही प्रतिश्रुतिबद्ध हो निर्विकार भाव देखुली सप्तपुत्र सलील समाधि भागीरथी जले कि निष्ठुर जंत्रणा फीता हुई पुत्र रक्त स्नाने आत्मघाती
1: महाराज धर्य धरतु महाराज जहा भवितव्य के पारिबो रोकी ताहा
0: आसंतु महामंत्री एकांतरे चाहे मु विश्राम बहु क्लांत मुहि
1: प्रणाम आर्य स्मरण करिबा मात्रे आसिबी तुरीते

0: तुम्बे यही दुष्ट आचरण।
1: सुन आर्य पुत्र, मुही देवनदी गंगा महापातक नासिनी जन्म महर्षि कन्या जाह्नवी मो नाम। देवलोक कार्य सिद्धि पाई बरी थिली आपण को पति रूपे जेणु थिली प्रतिश्रुति बद्ध अष्टवसुपासी
2: पुनश्च मोहर संतान रूपे मतिभ्रम हेउनि तो मोर किपरि संभव या देव नदी पवित्र प्लाविनी गंगा मोर पत्नी मु कलि एति रस हरई बसिली मोर सर्वशिरी।
1: किंपा अनुतप्त देव विधिर विधान एहा कर्तव्य मु करिछि संपन्न देवलोक रक्षा पाई कृतज्ञ मो आर्य। बरी अछ मते पत्नी रूपे सहधर्मी होई मोर पथे सापमुक्त करिछि बसुरे कृतज्ञ मु।
2: ना देवी अष्टवसु पिता मुहि अथच चढ़िना कहीं एते महाभाग्य पाई सुधा कहीं मो हतभाग्य आज कहीं मते अनुतप्त कराइल देवी आशीर्वाद परिवर्ते देईगल सांतनुरे खाली अभिशाप।
1: आर्य पुत्र अष्टवसु पिता हेबा पाई एकमात्र योग्य व्यक्ति तुम्भे एमही मंडले बसुगण चाहिथिले एहा जेणु तुम्भे जानो नाही निज परिचय धिक्कारी निज को हुओ वृथा अनुतप्त।
2: मोर परिचय कुहो कुहो देवी कुहो किबा मोर परिचय
1: कहुछि मु आर्य धैर्य धरि सुण ताहा। इक्ष्वाकु वंश संभूत राजा महाविष थिले सत्यनिष्ठ प्रजानुरंजक न्याय मार्गे राजधर्म करुथिले रक्षा ऋषि धर्म करी आचरण संसार जीवने थिले से महर्षि राजश्री महाविष हेले स्वर्गकामी दश शत अश्वमेध यज्ञ एक शत राजसूय यज्ञ करी संपादन तुष्ट कले देवराज इंद्रे इहलोक कर्म शेषे महाविष गले स्वर्ग राज्ये पाई सर्व स्वर्ग सुख बासो कले महाविष महर्षि गणक सह सुख स्वच्छंदरे। काही केते अतीतर कथा एकदा राजश्री गण देवगण सह करुथिले स्तुति परम ब्रह्म परमात्मांकर

0: प्रणाम श्रीचरणे प्रभु।
1: आयुष्मती भव सर्वकुशलत कन्या।
0: हाँ प्रभु।
1: किए ये अबला अनिंद सुंदर रूपकांति मेघमाला बखेजेनी नाचई चपला किए से भाग्यवान कन्दर्प पुरुष बरिबये बड़ा पत्नी पितार प्रति अंगे मने हुई नाची उठे कोटि वर्मी वाला सते हवा होई व प्लावित ही स्वर्ग कपुर स्कंधपुर खसी पड़े छिन्न उत्तरीय कटी देशे तार आपर्प अंगराजी थन्नर विधाता गड़ी अच यही बड़ा क्यों द्रव्य दे क्षीण कटी वक्ष सभा नहीं ता उपम धन्य हेला मोर चक्षु देखी यही रूपर संभार सुंदरी को धन्य हेली मोही धन्य हेली।

0: महाभीष राजस्य होइछ तुम्हे दश शत अश्वमेध यज्ञ एक शत राजसूय यज्ञ शेष परे बोलाउछ राजस्य निजको पापासक्त होइ बढाइछ इच्छा देवी जाह्नवीरे इति बड़ आस्पर्धा तुमर करिबिनि क्षमा मानव लोक वासना होइ नाही चरितार्थ स्वर्गवास पाई तेणु होइछ अयोग्य
1: प्रभु सिचरणे क्षमा मागे प्रभु न दियंतु न दियंतु अभिशाप मोरे
0: क्षमा जड़े महापात किरे तुम्ब स्पर्शे तुम्ब स्तुति गाने ब्रह्मलोक हेला अपवित्र देव नदी पातक नाशिनी पुण्य तोया गंगा प्रति निक्षेपिच पाप दुष्टि शुण महाभीष घेन मोर अभिशाप ধৃষ্টতার কুফল স্বরূপ জন্ম নেব মানব লোকরে দেব নদী গঙ্গা প্রতি করিয়াছ যে নিন্দনীয় আচরণ কুফল স্বরূপ যে গঙ্গা চিত্ত তুম করিছি হরণ করিব সে তুম প্রতি প্রতিকূল আচরণ মর্ত্যমণ্ডলরে ক্রুদ্ধ হেব তুমি অভিশাপ হই মুক্ত হেব স্বর্গকামী যাও মহাভীষ অবিলম্বে পরিত্যাগ কর ব্রহ্মলোক।

0: ओह केड़े भाग्यहीन मुही पत्नी उपदेश आज हेला मोर कंटकित सज्जा सप्तवसु हेबे साप मुक्त किंतु किंतु मु
1: देख अष्टवसु मन हुए सुर नदी गंगा आसुचंती स्वर्गधाम पतित पावनी पातक नासिनी महाजन्मवीरे जणाइबा सर्वदुख एकमात्र माता गंगा आम्भ तप्त प्राणे लेपिवे चंदन भरी शीतलता
0: माता जाह्नवी घेनन्तु प्रणाम
2: उठ बसुगण तृप्त मुहि अछि कि समस्या
0: माता क्षम अपराध आम वशिष्ठ आश्रम हरि होमधेनु नंदिनी को अभिशप्त अभिशप्त आम्भे सर्वे तनु मन प्राणे
2: जाने मुहि वत्स खोजुअछ मातृगर्भ नेवाको आश्रय
0: हो माता पथित पाविनी पाप विनाशिनी तुम्भे करुछु करुछु प्रार्थना मानवी रूपरे तुम्भे होई अवतीर्णा गर्भे तव स्थान दियो अष्टवसु गणे
2: किंतु कहि कि पारिब वत्स के होइब पिता तव
0: जानिअछु सर्व माता राजस्थि प्रतिप पुत्र हेबे आम्भ तात
2: तथास्तु ताहि मो इच्छा जाओ वत्स देउ अछि प्रतिश्रुति वर्ष परे वर्ष जन्मी सप्तवसु हेबे साप मुक्त देई सर्वे विसर्जन मपुत जलरे किंतु वत्स द्यो
0: माता
2: वसुगण मध्ये तुमे अटत अष्टम जन्म नेब अष्टम गर्भरे ऋषि वाक्य हेबनी अन्यथा दीर्घ काल रहिब धरारे हेब अद्वितीय वीर किंतु वसुगण करे अनुरोध निज निज तेज अष्टमांश दान देव द्यो अष्टम सुरे हेब सही पराक्रमशाली ज्ञानी गुणी भारत गौरव जाओ सर्वे लोभ शांति देउछि आशीष जाऊ अछि मुहि हिमगिरी पाद देशे हरद्वार तीर्थे राजर्षि प्रतिप छन्ति ध्यानमग्न होई पुत्र कामनारे देली प्रतिश्रुति पुराइबे मनोवांछा
0: प्रणाम प्रणाम चरणी मात
2: जाओ वत्स

वाकुसुम संतासम कश्यपयम वहाद्युतिम धुंतारी सर्व पापघ्नं प्रणतस्मि दिवाकरम्।

0: रानी देवी कहीं गला देवी
1: राज्यपुत्र जाई थिली समीधा संग रहे की संवाद स्वामी किम पई चिंतित
2: आज एक अघटन घटी ध्यान रे
1: अघटन
2: काहु आसी एक देव कन्या असामान्य रूपसी युवती बसी मोर दक्षिण उरुरे पति रूपे बरिबा को चाहिला से मोते
1: स्वामी
2: देई आश्वासना बाणी कहली मु दक्षिण उरु तो योग्य कन्या पुत्र वधु पाई पत्नी जेणु बामा देली प्रतिश्रुति बसी अछ जेणु मोर दक्षिण उरुरे हेब पुत्र वधु मोर
1: आज्य पुत्र आम्ही जे पुत्रहीन किपरि पूरण हेब तव प्रतिश्रुति
2: सेथि पाई चिंतित मु देवी तपस्यारे सिद्धि बिना गुणवान पुत्र टी आसिबनी गर्भे समाधान कली शेषे सपत्नीक करिबी तपस्या कठोर तापसव्रते होइबा निमग्न सिद्धि लाभ हेब निश्चय तुम गर्भ जन्म नेब गुणवान पुत्र शांत सुश्य पितार एक नंदन सांत्वन नामर करि सार्थकता
1: एहा कौन सत्य स्वामी
2: सत्यनिष्ठ प्रतिपर यहा भविष्यत वाणी
1: चल चल तेबे स्वामी जीवा तपोवनी

0: प्रतिज्ञा मोर न करी विवाह हे बिया जन्म ब्रह्मचारी करुछि प्रतिज्ञा हस्तिनार राज सिंहासने न बसिबि केबे हे बितार रक्षक मात्र एहा मोर प्रतिज्ञा विष्णु प्रतिज्ञा विष्णु प्रतिज्ञा विष्णु प्रतिज्ञा
1: देवव्रत करुचि प्रतिज्ञा भीष्म प्रतिज्ञा देवव्रत करुचि प्रतिज्ञा देवव्रत
2: आसुअछि आर्य कर नाही दुख जथा काले समर्पिबि तब पासे मोर हि पुत्र देवव्रत
1: देवी देवी देवी

प्रचार कलु नाटक देवव्रत विभिन्न भूमिकारे अंशग्रहण करिथिले शांतनु नवकिशोर आचार्य महामंत्री विपिन बिहारी त्रिपाठी प्रतीप रवींद्र कुमार महापात्र ब्रह्मा एवं वशिष्ठ रामचंद्र रथ महाभीष गोलकचंद्र महांति देवदूत सरोज कुमार बेहरा दियो बसु कुंज बिहारी नंद अन्यतम बसु बद्रीनारायण राउत जाह्नवी अन्नपूर्णा भूया राजमहिषी पुष्पिता दास दासी उद्योग पत्नी पुष्पिता मांडु संगीतांशरे श्लोक आवृत्ति धनंजय शतपथी कंठदान भानुमती साहू रचना मायाधर नंद प्रयोजना रमापद नंद सहयोग करिथिले किशोर महंती आकाशवाणी कटक सिद्धार्थ मिश्र कंठरे शुणन्तु आधुनिक गीत रचना निजाम

0: जे इटा कौ प्लांट
1: टेंजेरीन बहुत मीठा भांगीवनी हला फ्री फॉरेन ट्रिप क्लिक ऑन द लिंक एबे करछ
0: जे रुहो लिंक रे क्लिक करो नहीं
1: काई की
0: एटा एसएमएस स्कैम क्लिक करबो तो तुमरो बैंक डिटेल्स हेबो चोरी
1: ओह थैंक्स कपू बंचेई देलु एई ने तोरो बुद्धिमत्ता रो फल
2: आरबीआई कहे स्मार्ट बनो कूल रुहो
3: कस्टमर केयर तरफ रु फोन आसी थिला कहुथिले तमरा 50,000 रिवार्ड पॉइंट्स एक्सपायर हेई जिवो ए लिंक पर थी एपीके डाउनलोड करिनियंतु
2: ठीक लागुनी स्कैम भी हेई पारे।